और जब तू आएगी दे आर वेरी कूल, दे आर सो प्रोग्रेसिव. बस एक इंडियन आउटफिट पहन के आना. हाँ, पहली बार लाइक फर्स्ट इंप्रेशन में उन्हें लगना चाहिए कि क्या इतनी सही बंदी है, सो देसी. एंड आई एम लाइक, तू तो कह रहा था तेरे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी कूल है, तो मैं जीन्स और शर्ट पहन के आ जाऊँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है. इट्स जस्ट दैट तू ज़्यादा सुंदर लगती है, तू ज़्यादा सुंदर लगती है. सलवार कमीज पहनेगी तो ज़्यादा सुंदर लगेगी. एंड आई जस्ट वॉन्ट देम टू नो कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को डेट कर रहा हूँ. एंड आई एम लाइक, अबे ओ रेड फ्लैग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग योर पेरेंट्स और यू एनी मोर. यू नो, जब बंदे आपसे ऐसी बातें करते हैं ना कि यार तू थोड़ा सा ना अपने कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज कर, थोड़ा सा, या फिर दे टेल यू कि ये

0: visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
2: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे. आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
6: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: एक पार्टी में जाकर जस्ट फॉर अ लाख आपने झूठ बोला दैट यू आर अ प्रोफेशनल पोल डांसर, यू लैंडेड अ रियली ग्रेट गिग विद दिस गर्ल, हैड अ ग्रेट टाइम एट नाइट, और अब वो आपको कह रही कि अपनी पार्टी में तू प्रोफेशनल पोल डांसिंग करके दिखा. वेरी गुड, इट सर्व्स यू जस्ट राइट.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: So now you kind of know that it's the time for the secret box. आपके पास अगर कोई अपने dirty confessions है to share with me, wash your dirty linen with me. Anyway, you know what to do. मेरे पास है आपको सुनने के लिए non-judgmental कान मेरी जान. मेरे साथ है मेरी mystery caller. Hi mystery caller.
3: Hello.
1: How are you?
3: Yeah. I'm good.
1: It's like अच्छा ठीक है, मैंने सवाल पूछा माइक लेकर and you're like yeah. मैं आपको बता दूँ मेरा confession क्या है. क्या है आपका confession? Naughty girl.
3: हाँ, सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज ना, उससे पहले भी आई डिडंट रियली सी एनी वैल्यू इन डेटिंग समवन एंड ऑल, बट देन आई वेंट टू कॉलेज और मैं जहाँ जा रही थी सब डेट करे जा रहे थे किसी को, ऐसे हम बैठ के ट्रॉमा बॉन्डिंग भी कर रहे होते थे, तो सब मेरे बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, मेरा बॉयफ्रेंड कुत्ता है पूरा टाइम ये होता, और मैं ऐसा यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए. तो फिर आई वॉज, मैं एक पॉइंट पे ये भी था, मैं रूम पे भी जा रही होती थी, मैं सारी बंदियां फोन उठा के एक पॉइंट पे अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी और मुझे बिल्कुल मन नहीं था, मैंने कहा यार इवन आई नीड टू गेट दिस नाउ,
1: राइट टॉय है सबके पास है मुझे भी चाहिए.
3: हाँ, किससे बात करो रात में. तो फिर मैंने बहुत सारी डेटिंग प्रोफाइल्स डाउनलोड करी, मैंने एक बंदे के साथ मैच आज हुआ, सब हुआ, वी स्टार्टेड डेटिंग एंड दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ.
1: ओके,
3: दो साल खराब हो गए जिंदगी के कॉलेज के. सो देन नाउ आई डिसाइडेड दैट दिस डजंट मैटर, सो नाउ आई एम इन माय होल फेज. And I think it's amazing.
1: Okay. Okay. एक second. For all those people जिन्हें नहीं पता कि आपने ये प्यार से जो भी क्या बोल दिया, उस phase में आप basically hookup करते हो, love and romance में आपको interest नहीं है, naughty, hot is what interests you, right?
3: Yeah.
1: Okay. And how's that going for you? What's your count so far,
3: it's
1: countess?
3: Really nice. I think it's 3.
1: तो अभी 3 ही हुए ना. हमारे ऑफिस में एक बंदा काम करता था, एक दिन आया नया एंड ही वाज लाइक तो तेरा काउंट क्या है, एंड आई वाज लाइक सॉरी किस चीज का काउंट, कितने बर्गर्स कितने सैंडविचेस. तो ऑब्वियसली तो मैंने उससे पूछा कि लाइक हाउ मेनी वुमेन हैव यू बीन विद, तो ही इज लाइक यार अभी तक 48. तो That's right. तो आई थिंक कि उसे आपसे ज्यादा रोशिफिकेशन की जरूरत है और शायद उसे एक डॉक्टर की भी जरूरत पड़ जाएगी एट दिस रेट. बट शैल आई रोशिफाई यू फॉर बीइंग सो ओपन एंड लिबरेटेड अबाउट योर लाइफ चॉइसेस? देयर यू गो माय डार्लिंग,
4: यू've बीन रोशिफाइड.
1: सो ये 3 का काउंट बहुत अच्छा है. अगर मैं आपकी मम्मी होती तो ये कहती कि

0: 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islin.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
1: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
8: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
7: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
9: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है.
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Roshi Baba ki jai!
2: Calm down, my bhagjano. आपने जब अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई की थी तब मुझसे पूछ के नहीं की थी, उसे झूठ बोला था, मुझसे पूछ कर नहीं बोला था, लेकिन अब जब आपके साथ वो कॉन्फ्रंटेशन करने वाली है एंड शी वॉन्ट्स यू टू शो अप इन पर्सन, माई ओनली सजेशन टू यू इज ब्लू कलर के कपड़े पहनकर जाना। जब भी किसी झगड़े में सामने वाले इंसान ने नीले रंग के कपड़े पहने होते हैं, दे एक्चुअली टेंड टू काम द एंटायर सीन डाउन। अर्थात जहां आपकी गर्लफ्रेंड 100% लाल पीला हो रही है, प्लीज पार्डन माई कलर पन, वही वो आपके ब्लू कपड़ों के आसपास आते ही कम से कम 40 डिग्री ठंडी हो जाएगी एंड शी विल बी लेस मैड एट यू। यू आर ऑलरेडी वेलकम फॉर दिस टिप। अगर आपको ऐसे ही पर्सनलाइज्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी टॉक अबाउट इट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB एंड व्हाइल यू डू दैट नॉरी बॉय, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
4: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Yaar, I know this is gonna sound really creepy, okay, but mujhe na honestly pehli baar mohabbat hui hai. It's not a fling, it's not a hookup. The only problem is ki jis bandi se mujhe pyar ho gaya na, she looks a lot like my mom. Isn't that a bit creepy?
2: Roshi ke DM se.
1: You are so cute, Akash. But let me tell you, आपको जो creepy लग रहा है ना, वो actually creepy नहीं है. Because according to psychology, we are attracted to people जो हमारे, if you are a guy, तो वो हमारी mom की तरह resemble करते हैं. या if you are a girl, then you will be attracted to guy who has a lot in common with your dad. अब ये traits हो सकते हैं कि आपके dad की तरह behave करता है या आपकी mom की तरह behave करती है. या फिर ये ditto physical appearances हो सकते हैं. In fact, every time my brother has dated a girl, उन सब लड़कियों में एक चीज कॉमन है, उन सब की नाक मेरे जैसे लगती है. एंड करण गेट्स सो अपसेट बिकॉज़ ही इज लाइक, यार व्हाई एम आई रिपीटिंग दिस पैटर्न. एंड आई वाज लाइक, यार क्योंकि तुझे ऐसा लगता है दैट इफ यू डेट समवन हु रिमाइंड्स यू ऑफ योर सिस्टर इन सम वे, फिजिकली या इमोशनली या मेंटली, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, बींग एबल टू ट्रस्ट अ पर्सन, क्योंकि फेमिलियरिटी है इतनी. सो डोंट गेट क्रीप्ड आउट आकाश, व्हाट यू आर फीलिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. वी डू गेट अट्रैक्टेड टू पीपल हु रिमाइंड अस ऑफ आवर पेरेंट्स इन सम वे. आई नो इट साउंड्स रियली क्रेजी, बट ये सच है. सो जस्ट गो अहेड एंड एंजॉय बींग इन लव विद दिस पर्सन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. बस हाँ, मतलब अगर बहुत तेरी मम्मी जैसे लग रही है तो यू माइट हैव अ problem when you're getting intense and romantic, but I'm sure you'll figure a way around that. On that note, agar Akash ki tarah aapki bhi zindagi mein koi bahut hi ajeeb aur gareeb problem hai, feel free to hit me up on Insta ya FB and we will take care of it. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So now go ahead, do what you have to do, hit me up, lekin kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आप एक एक्स एफ बॉय हो और आपको अब सच्चा प्यार हो गया है एंड यू डोंट नो हाउ टू अप्रोच इंटीमेसी विद दिस वुमन बिकॉज फॉर यू अभी तक इट वाज जस्ट फन एंड गेम्स, लेकिन अब जब आप सेक्सुअली इंटीमेट हो गए विद योर पार्टनर यू वांटेड टू हैव मोर मीनिंग, देन माय सजेशन इज यू मेक इट फुल ऑफ शुगर एंड स्पाइस. सो आई टेल यू वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम. वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब उसे अच्छा लगता है हुकअप्स एंड वन नाइट स्टैंड्स एंड स्टफ लाइक दैट. वो सीरियस कमिटमेंट से काफी दूर रहता था टिल ही मेट दिस गर्ल हु इज 3 years यंगर, बट उसे ना फुल ऑन मोहब्बत हो गई. एंड ही वाज लाइक, मुझे समझ नहीं आ रहा बिकॉज मैं हर पैंतरा ट्राई कर चुका हूँ. व्हेन आई गेट नॉटी आई वांट दिस टू बी स्पेशल बट आई डोंट नो हाउ. एंड आई वाज टेलिंग हिम दैट ये शुगर एंड स्पाइस वाली ट्रिक ये है कि व्हेन यू आर गेटिंग नॉटी यू कैन मेक इट एज स्पाइसी एज एडवेंचरस एज रेसी एज यू वॉन्ट इट टू बी. लेकिन इस सब के होने से पहले और इसके होने के बाद जो मोमेंट्स है ना, अगर उसमें आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, आप एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, यू आर वॉचिंग आउट फॉर ईच अदर, लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग अ बाथ फॉर योर पार्टनर आफ्टर यू गेट नॉटी, ये जो छोटे छोटे चीजें हैं ना जो हम नहीं करते हैं व्हेन वी आर हुकिंग अप विद समवन और जस्ट सुपरफिशियली एंगेजिंग इन अ रिलेशनशिप, दीज आर द थिंग्स दैट ऐड द शुगर टू द स्पाइस. और जैसे ही आपके गेटिंग रोमांटिक एरिया में शुगर एंड स्पाइस दोनों होंगे, इट विल ऑटोमेटिकली फॉर a really meaningful deep connection with the two of you. Isse try karke dekho apne relationship mein, whether it's new or old, if you want it to be deep and meaningful, this is the only trick you will ever need. I promise you that. And isse try karne ke baad, don't forget to tell me about it on Insta ya FB. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead and do whatever you have to do, lekin kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunta.

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
2: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 rupee ट्रायल पैक नाउ।
1: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Saad Jeeturaj. Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi. My name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you. Kyunki is film mein kahi chhoti chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahi bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू, एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं. एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है Jeeturaj ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रिकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज.
0: साथ Jeeturaj, Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
5: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है.
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Roshi Baba!
2: Roshi Baba ki!
3: Calm down, my bhagjano. I have some very incredible relationship advice for you, especially un moments ke liye jab aap apne partner se jhagda kar rahe hote ho. This is a very incredible psychology trick that I learned through the various kinds of strange relationships I had, but this one really works papa ke saath at least. Aur ye maine bahut recently discover kiya hai. Agar aap ek argument mein ho, let's say with your boyfriend, your girlfriend, or even your parent or someone in office, aur aap jab wo chilla rahe hain aur bilkul hi uttejit hain, अपनी आवाज को काम और नॉर्मल डेसिबल पे रखेंगे, इट विल क्रिएट द इल्यूजन सामने वाले के दिमाग में भी दैट यू आर विनिंग द आर्ग्यूमेंट. तो अगर आप चाहते हो कि वो आर्ग्यूमेंट नो मैटर किसके साथ है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉस, मम्मी, एनीथिंग, अपनी आवाज ऊंची मत करना. ट्राई दिस, 100% वर्क्स एवरी सिंगल टाइम, एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू, थैंक यू बोलने के लिए यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो व्हाइल यू फाइंड मी, डू व्हाट यू हैव टू डू, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: रोमांस एक ऐसी चीज है ना कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया टू बी इन अ रिलेशनशिप देन इट्स अ लॉट लाइक अ बॉक्सिंग मैच और बॉक्सिंग मैच में एक दो मुक्के तो खाने ही पड़ते हैं और अगर तुम उन मुक्कों के लिए तैयार नहीं हो तो उस बॉक्सिंग मैच एके रिलेशनशिप में घुसने से पहले 180 बार सोच लिया करो। ये ज्ञान की अमेजिंग टिप्पणी आज मेरा भाई मेरी कजन को फोन पर बता रहा था बिकॉज शी वॉज हैविंग सम रिलेशनशिप ट्रबल्स एंड शी सेड यार क्या करूं मैं भैया ये वो और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि करण क्या पीस ऑफ एडवाइस देगा बिकॉज करण इज नॉट द लव गुरु इन द हाउस आई एम। लेकिन उसे जब ये एडवाइस दी ना मैं काफी शोक थी। आई वाज लाइक यार ये तो बहुत सजेशियस एडवाइस है और अगर आप भी ऐसे रिलेशनशिप में 5-6 मुक्के खा चुके हो ना और आपको बस किसी से बात करनी है वेंट करना है या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए व्हाई डोंट यू हिट मी अप आई विल बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू हिट मी अप लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: एक पार्टी में जाकर जस्ट फॉर अ लाक आपने झूठ बोला दैट यू आर अ प्रोफेशनल पोल डांसर, यू लैंडेड अ रियली ग्रेट गिग विद दिस गर्ल, हैड अ ग्रेट टाइम एट नाइट, और अब वो आपको कह रही कि अपनी पार्टी में तू प्रोफेशनल पोल डांसिंग करके दिखा. वेरी गुड, इट सर्व्स यू जस्ट राइट.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: So now you kind of know that it's the time for the secret box. आपके पास अगर कोई अपने dirty confessions है to share with me, wash your dirty linen with me. Anyway, you know what to do. मेरे पास है आपको सुनने के लिए non-judgmental कान मेरी जान. मेरे साथ है मेरी mystery caller. Hi mystery caller.
3: Hello.
1: How are you?
3: Yeah, I'm good.
1: It's like अच्छा ठीक है, मैंने सवाल पूछा mic लेकर and you're like yeah. मैं आपको बता दूँ मेरा confession क्या है. क्या है आपका confession? Naughty girl.
3: हाँ, सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज ना, उससे पहले भी आई डिडंट रियली सी एनी वैल्यू इन इट डेटिंग समवन एंड ऑल, बट देन आई वेंट टू कॉलेज और मैं जहाँ जा रही थी सब डेट करे जा रहे थे किसी को, ऐसे हम बैठ के ट्रॉमा बॉन्डिंग भी कर रहे होते थे, तो सब मेरे बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, मेरा बॉयफ्रेंड कुत्ता है पूरा टाइम, ये होता और मैं सोचती यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए. तो फिर आई वाज, मैं एक पॉइंट पे ये भी था, मैं रूम पे भी जा रही होती थी ना, सारी बंदियां फोन उठा के एक पॉइंट पे अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी और मुझे बिल्कुल मन नहीं था, बट मैंने कहा यार इवन आई नीड टू गेट दिस नाउ,
1: राइट टॉय है सबके पास है, मुझे भी चाहिए.
3: हाँ, बात करो रात में. तो फिर मैंने बहुत सारी डेटिंग प्रोफाइल्स डाउनलोड करी. मैंने एक बंदे के साथ मैच आज हुआ, सब हुआ, वी स्टार्टेड डेटिंग एंड दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ.
1: ओके,
3: दो साल खराब हो गए जिंदगी के कॉलेज के. सो देन नाउ आई डिसाइडेड दैट दिस डजंट मैटर, सो नाउ आई एम इन माय होप फेज. And I think it's amazing.
1: Okay. एक second. Yeah. For all those people जिन्हें नहीं पता कि आपने ये प्यार से जो भी क्या बोल दिया, उस फेज में आप basically hookup करते हो, love and romance में आपको interest नहीं है, naughty naughty, hot hot is what interests you, right?
3: Yeah.
1: Okay. And how's that going for you? What's your count so far,
3: it's
1: countess?
3: Really nice. I think it's 3.
1: तो अभी 3 ही हुए ना. हमारे ऑफिस में एक बंदा काम करता था, एक दिन आया नया एंड ही वाज लाइक तो तेरा काउंट क्या है, एंड आई वाज लाइक सॉरी किस चीज का काउंट, कितने बर्गर्स कितने सैंडविचेस. तो ऑब्वियसली तो मैंने उससे पूछा कि लाइक हाउ मेनी वुमेन हैव यू बीन विद, तो ही इज लाइक यार अभी तक 48. तो That's right. तो आई थिंक कि उसे आपसे ज्यादा रोशिफिकेशन की जरूरत है और शायद उसे एक डॉक्टर की भी जरूरत पड़ जाएगी एट दिस रेट. बट शैल आई रोशिफाई यू फॉर बीइंग सो ओपन एंड लिबरेटेड अबाउट योर लाइफ चॉइसेस? देयर यू गो माय डार्लिंग,
4: यू've बीन रोशिफाइड.
1: सो ये 3 का काउंट बहुत अच्छा है. अगर मैं आपकी मम्मी होती तो ये कहती कि बेटा इसे ना सिंगल डिजिट में ही रखना, ठीक है?
3: Done.
1: बोल भी रही है डन यार, लिव योर लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. और अगर आपकी भी जिंदगी में मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह एक सॉलिड काउंट है विच इज नॉट इन सिंगल डिजिट्स बट इन डबल डिजिट्स, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, आई वांट टू नो ऑल अबाउट इट इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: तेरा क्या होगा कालिया
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
4: अब मिर्ची का
6: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

आज मुझे इत्तफाकन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान मिला। मैं एक इंटरव्यू करने गई थी और उस इंटरव्यू के दौरान इस इंसान और मेरे बीच में बातें होने लगीं और उसने मुझसे ये कहा कि जब हम किसी सामने वाले इंसान के साथ वल्नरेबल होते हैं, खुलकर अपने दिल की बात कहते हैं, जब हम सच्चे होते हैं, जब हमारे अंदर कोई झूठ नहीं होता और हम एक्चुअली जैसे हैं वैसे ही प्रेजेंट होते हैं, तो उससे बड़ी स्ट्रेंथ और कोई नहीं है। एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड, तुझे पता है ना कि इस दुनिया में अक्सर लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप वल्नरेबल हैं तो आप वीक हैं। ही सेड, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल उल्टा है। अगर आप वल्नरेबल हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ है कि इस दुनिया ने आपको इतना कठोर नहीं बनाया कि आपके दिल में अभी भी प्यार के लिए, फीलिंग्स के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत सारी जगह बाकी है। ये कॉन्वर्सेशन मैं शायद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाली हूँ। एक रैंडम स्ट्रेंजर ने मुझे एक ऐसी बात कह दी जिसे कहकर अभी मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। ये रैंडम स्ट्रेंजर शायद अब कभी भी मेरे लिए एक रैंडम स्ट्रेंजर नहीं रहेगा। मे बी उस कॉन्वर्सेशन ने हमें ज़िंदगी भर के लिए दोस्त बना दिया है। और शायद दोस्ती ऐसे ही होती है। तो अगर आप कभी किसी स्ट्रेंजर को मिलो ना और आपको ज़िंदगी में मौका मिले टू बी ऑनेस्ट योर रियल सेल्फ, तो मे बी यू शुड गिव इट अ चांस। क्योंकि अगर प्यार नहीं तो बहुत खूबसूरत दोस्ती तो हो ही जाएगी। ऑन दैट नोट, अगर आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो डू वट एवर यू हैव टू डू, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिसके पास लव है उसके पास सब है। एंड आई लव यू लोड्स।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

0: बाजार में,
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक बावर्ची होता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। और सबने ना कभी कुछ ना कुछ तो कुक किया होता है, फिर चाहे वो हॉस्टल में तुम्हारे 2 मिनट नूडल्स हो या फिर चाय। तो हम सब कहीं ना कहीं तो बावर्ची होते ही हैं। इसी टाइटल को रखकर ऋषिकेश दा ने उस जमाने की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई विथ राजेश खन्ना एस बावर्ची एंड जया बच्चन जी। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, एके हंगल साहब, असरानी साहब, दुर्गा खोटे। तो आज ना इसी मूवी की कहानियां बताऊंगी जो कि मैं कुक नहीं करके आई हूँ, वो सच में ये खट्टी मीठी किस्से एक्चुअली में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म हुए थे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कास्ट और क्रेडिट से। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना ऋषिकेश दा, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी जी की फिल्म बावर्ची की बात हो रही है। आपको पता है इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था कि कास्ट और क्रेडिट को ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जैसे क्रेडिट दिए जाते हैं ना, ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें क्रेडिट्स फिल्म के शुरुआत में नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा, और अगर नहीं देखी है या फिर बहुत पहले देखी थी तो मैं याद दिलाऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये यूनिक आइडिया फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश दा का था। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। राजेश खन्ना थे, जया बच्चन थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रेडिट्स नहीं दिए गए, यानी देयर वर नो टाइटल कार्ड्स। तो फिर क्या किया गया था, इसमें अमिताभ बच्चन जी के वॉइस ओवर ने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये यूनिक आइडिया पहली बार किसी फिल्म में देखा गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से क्यों उन्होंने टाइम निकाला, ये अभी बताऊंगी श्रेया के साथ। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज
2: Only on मिर्ची It's hot।
3: Hi, my name is Peter Parker।
4: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड से किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
5: Spiders have three life cycles.
4: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया एंड पीटर पार्कर यानी टॉम हॉलैंड, इन दिस फिल्म इट्स अ लिटिल डिफरेंट। इन फैक्ट आई कैन गो अहेड एंड टेल यू कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day, but I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने, वो क्या है। ओके, आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: लिसनर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टाइटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज द फिनोमिनल ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने ये सोचा भी और अपनी फिल्म बावर्ची में किया भी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही थी द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची की, ऋषिकेश दा की डायरेक्टेड, जिसमें बावर्ची बने थे राजेश खन्ना, उनकी लव इंटरेस्ट बनी थी जया बच्चन जी। और इस फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कास्ट एंड क्रू के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा ऋषिकेश दा ने, एंड दैट वाज कि हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया गया। अब अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, तो ऋषिकेश दा उनसे ये फेवर मांगने में थोड़ा कतरा रहे थे। उन्होंने जया जी से वाइल्ड शूटिंग द फिल्म ऐसे ही मुस्कुरा के बात बात में कह दिया कि काश अमित ये काम कर पाता। ये बात जया जी ने घर जा करके अमित जी को डिनर पे बताई। अमिताभ बच्चन और जया जी के लिए ऋषिकेश दा फादरली फिगर थे, हमेशा से एक बड़े भाई थे। जैसे ही अमित जी ने ये बात सुनी, वो ऋषिकेश दा के घर पहुंच गए और उनसे नाराज होके कहा, दादा ये बात आप मुझसे आके नहीं कह सकते थे, आपको जया की जरूरत पड़ी इसके लिए। ऋषिकेश दा ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। पुरानी जीन्स पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो बस वापस आओ श्रेया के साथ।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना ये दोनों डेटिंग फेज में थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बावर्ची की थोड़ी देर पहले। तो इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया जी ना एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, वो प्यार में धीरे धीरे पड़ रहे थे। तो क्या होता था कि अमित जी जया जी को मिलने फिल्म के सेट पे जाते थे। अब सेट पे तो उनको उस टाइम के सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना भी मिलते थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन थोड़े अखरते थे। अच्छा, काका उस टाइम पे अपने स्टारडम के खुमार में भी थे। अमिताभ बच्चन बिजी जरूर थे, उनके पास फिल्में बहुत थीं, लेकिन जनरली उनकी फिल्में इतनी खास चल नहीं रही थी। ऐसे में काका उनको ताने मारा करते थे, रिमार्क्स पास किया करते थे। क्या अमिताभ बच्चन को गुस्सा आया या फिर उनकी तब की गर्लफ्रेंड जया जी को, बताऊंगी थोड़े से गानों के बाद। मुझे बहुत मजा आता है आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में, क्योंकि फिर मुझे यकीन होता है कि आप वापस यहाँ होंगे। सो कम राइट बैक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

काका बोले तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारे ताने मारते थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है ऋषिकेश दास द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। तो मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी बात? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एंड जया जी वर डेटिंग। वो एक दूसरे को मिल रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे थे। तो अमित जी के पास बड़ी सारी फिल्में थी, वो बिजी भी थे, लेकिन उनकी फिल्में इतनी चल नहीं रही थी। ऐसे में द सुपर सक्सेसफुल राजेश खन्ना जब उनको सेट पे देखते तो ऑफकोर्स उन्हें वो कॉम्पिटिशन लगते और वो उनको बहुत सारे ताने मारते। अमिताभ बच्चन भी सुन लेते, जया बच्चन भी सुन लेती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काका ने एक बहुत ही खराब शब्द कहा। इस शब्द को सुन करके जया जी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने काका को जाकर के उनके कान में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं कहा। वो शब्द क्या था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मनहूस, ये कह के बुलाया था काका ने अमिताभ बच्चन जी को। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है बावर्ची फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश दा, फिल्म के मेन लीड राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन जया बच्चन। ये वो टाइम था जब जया बच्चन जया बहादुरी थी और अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्में कर रहे थे लेकिन उनकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, वो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी एक के बाद एक। ये वो टाइम था जब जया जी और अमिताभ बच्चन प्यार करने लगे थे एक दूसरे से, तो अमित जी ना बावर्ची के सेट पे उनसे मिलने जाते थे और हाँ ऋषिकेश दा तो उनके दोस्त ही थे। ऐसे में राजेश खन्ना को बहुत अखरते थे। राजेश खन्ना चलते फिरते अमिताभ बच्चन को कोई ना कोई ताना मार ही देते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब जया जी के सब्र का बांध टूट गया और वो था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कहा, मनहूस, तुम मनहूस हो, जिस भी फिल्म में जाते हो वो फ्लॉप हो जाती है। ये बात जया जी के दिल पे सीधे जाके चुभी। उनको इतना गुस्सा आया कि अमित जी उन्हें चाय पे वापस बैठाते रहे, बैठ जाओ छोड़ो जाने दो। जया जी गुस्से में उठी, राजेश खन्ना के पास गई और उनके कान में कहा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी कि यह आदमी क्या बनेगा और आप क्या रह जाएंगे। इस एक लाइन के बाद वो वापस आके चाय पीने लगी एंड आफ्टर दिस काका ने अमिताभ बच्चन को कभी ताना नहीं मारा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और भी किस्से हैं उस जमाने के, तो गाने सुन करके यहीं वापस आने।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा एक और चीज में ये फिल्म बावर्ची खास थी, पुरानी जीन्स पर। हाय मेरा नाम है श्रेया और आज मूवी बावर्ची की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना, जया बच्चन एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। राजेश खन्ना यानी काका उस टाइम पे ना सुपरस्टार थे, बल्कि कहा जाता है कि इंडिया के वो फर्स्ट सुपरस्टार थे। उनके साथ हर हीरोइन ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मुमताज जी हो, आशा पारेख हो, जीना तमान हो, तनुजा जी हो, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक हीरोइन थी जो उस टाइम पे अपने स्टारडम के पीक पे थी, पर काका से थोड़ी दूरी बना के चलती थी। उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज इज लव इंटरेस्ट सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वो थी बावर्ची। जया जी और राजेश खन्ना की ये रोमांटिकली पेयर अप होने वाली पहली और आखिरी फिल्म थी, इसीलिए है ना ये यूनिक फिल्म, क्योंकि ऋषिकेश दा इन दोनों को एक साथ ले आए थे इस पिक्चर में। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, वापस आओ, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी हैं उस जमाने की।

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक ऐसी फिल्म जिसने हमें जम करके हंसाया और बहुत सारे सीन्स में इमोशनल भी कर दिया। आज उसी की बात हो रही है, बावर्ची। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही हूँ ऋषिकेश दा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। अच्छा, जो रेट्रो फैंस हैं उन्होंने डेफिनेटली ये फिल्म देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में राजेश खन्ना बावर्ची बने थे, एक जॉइंट फैमिली के लिए खाना बनाया करते थे। पर अगर जब आप फिल्म देखोगे ना, तो वो खाने से ज्यादा वो पूरी फैमिली का ख्याल रखते थे। सबके सीक्रेट्स भी इसी बावर्ची के पास होते हैं। जब ऋषिकेश दा ने ये अलग हट करके कैरेक्टर, एकदम अलग हट करके फिल्म काका को सुनाई ना, उन्हें बड़ा पसंद आया। सबसे ज्यादा एक्साइट उनको किया था बावर्ची की कॉस्ट्यूम, हाफ पैंट्स, एक शर्ट और सर पे टोपी। अब ये जो टोपी थी ना, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इस टोपी को दो वजहों से पहना था राजेश खन्ना ने, एंड वो दो रीजंस क्या थे? आहा, अब तो आप मुझे जान गए हो, ऐसे कहां बताती हूँ मैं आपको। ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में श्रेया को तो बड़ा मजा आता है। तो गाने सुन करके जल्दी से वापस आओ, फिर बताती हूँ इस टोपी के पीछे की कहानी। ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दा जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक्स। सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने वो, जिसे उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा? कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दाना बंगाली फिल्मों से बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे और इसीलिए उनकी कई सारी फिल्में बंगाली फिल्म से ही इंस्पायर्ड थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। बावर्ची की बात हो रही है, ऋषिकेश दा ने बनाई थी, राजेश खन्ना और जया बच्चन थी विद अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। ए के हंगल थे, असरानी साहब थे, दुर्गा खोटे थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बावर्ची भी एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर्ड थी और इसका नाम था गोल्पो होलियो सोटी। ये फिल्म तपन सिन्हा ने बनाई थी। बनी तो ये 1966 में थी, लेकिन जब ये ऋषिकेश मुखर्जी ने देखी थी, उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ हिंदी में बनाएंगे। पुरानी जीन्स पर आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी, तो श्रेया के साथ वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot।
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड से किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया एंड पीटर पार्कर यानी टॉम हॉलैंड, इन दिस फिल्म इट्स अ लिटिल डिफरेंट। इन फैक्ट आई कैन गो अहेड एंड टेल यू कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने, वो क्या है। ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
1: जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: फ्रेंड्स पर राहुल श्रेया के साथ। मेरा जाने का टाइम तो हो गया है, पर आपको पता है ना मैं अकेले नहीं जाती हूँ। इस समय एक गाना चूज करके मैं और आप मिल करके हाईवे तक घूम के आते हैं। तो चलो गाड़ी में जल्दी से बैठो। तो आज का मेरा हाईवे हिट पहली मुलाकात पे, एंड स्पेशली जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलने वाले होते हो ना, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना कि क्या बातें होंगी, वो मुझसे क्या कहेगा, मैं उससे क्या पूछूंगी, आगे कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ाएंगे, अच्छा हम कैसे लग रहे होंगे एक दूसरे को, ये सब सवाल होते हैं ना। तो आज उसी एक्साइटमेंट पे
1: आज उनसे पहली मुलाकात होगी।
0: यही गाना सुनते हुए चलते हैं। On that note, this is Shreya signing off. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक और इंस्टा पे, RJ Shreya with love. ये है मेरा हैंडल, that's RJ SHREYA Shreya with love.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली goes down the ground.
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, okay then. Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you. Kyunki is film mein kahin chhoti chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahin bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and

0: Peter Parker, yani Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से Tom Holland के shoulders पर rest करती है. क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो theatre से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे Bollywood की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने Spider-Man के franchise की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो please YouTube पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे recap जो हैं वो वीडियो देखो, and then see the film. तेरे को कुछ extra मजा आएगा. For now, Spider-Man की वजह से जीतूराज Tom Holland का कुछ extra fan हो गया है. Oh, also don't forget to catch my review on Instagram at Mirchi Jeeturaj, जहाँ पर कुछ extra बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? Okay, I told you, Instagram Mirchi Jeeturaj. For now, Spider-Man Brand New Day. By the way, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड Tom Holland के बीच में स्मूचिंग सीन है. For God's sake, bro, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. This is Spider-Man Brand New Day, recommended by Jeeturaj with four मिर्चीज.
1: साथ जीतूराज. जीतूराज. Only on Mirchi. It's hot. Radio Mirchi. It's hot.
2: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आपने कभी सोचा है कि अधिकतर धार्मिक स्थल ऊंची जगहों पर ही क्यों बने होते हैं? आइए इसके पीछे छुपे अर्थ को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जब इंसान सही रास्ते पे चलता है या जब वो असली अल्टीमेट ट्रूथ के खोज में निकलता है तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसलिए कहते हैं कि पुराने ज़माने में और शायद आज भी मंदिरें जो हैं, मस्जिद जो हैं, दरगाह जो है, चर्चेज, वो एकदम बाहर पहाड़ों पे, ऊंची-ऊंची पहाड़ों पे बनाए जाते हैं। तो बहुत मुश्किलों के बाद ही इंसान भगवान तक पहुँच पाता है, ये एक तरह से शायद सिग्निफाई करता है इसको। तो जब मुश्किलों का इतना सामना करना पड़ता है उसके बाद ही अल्टीमेट ट्रूथ मिलता है, भगवान ने इतना डिफिकल्ट क्यों बना रखा है इसको?
4: अल्टीमेट ट्रूथ फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअली इतनी डिफिकल्टी नहीं है। वो तो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर मंदिर इसलिए बने क्योंकि वो ऊंची स्थिति का यादगार है। जो भी देवी देवताएं या जो भी हाँ, बिकॉज वो बहुत हाई है तो हमने उनको पेडेस्टल पर बनाने के लिए बहुत ऊंची जगह पर बिठाया। बाकी कोई उसमें आपको कष्ट सहन करके ही वो चीज मिलेगी जो कभी कभी दिखाया जाता है। सी एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे पेरेंट ही तो हैं। आप गॉड इज ट्रूथ कहें, जो गॉड है, जो परमात्मा है, तो पेरेंट से मुलाकात करने के लिए कोई इतना
3: कष्ट नहीं उठाना चाहिए।
4: इतना कष्ट उठाने की कोई बात ही नहीं है। कष्ट किसके अंदर है? अगर जो चैलेंज है वो है उसके ट्रूथ के पाथ पर चलने की, ट्रूथ तक पहुंचने की नहीं। उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं होती। मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट ट्रूथ इज, पर उस पाथ पर चलने के लिए आपको जैसे एक बाहर की युद्ध होती है, एक अंदर की युद्ध होती है। क्योंकि बहुत समय से आप जो उसका उल्टा है आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है, वो कंफर्टेबल है, उससे टेम्पररी बेनिफिट है, तो वो युद्ध, वो जो बैटल है वो ज्यादा बहुत कश्मोकश जो है। हाँ। कि गुस्सा करें या ना करें, इच्छा रखें या ना रखें। हाँ। संतुष्ट हो या डिजायर्स हो, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो बैटल है, वो थोड़ी सी चैलेंजिंग है क्योंकि इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग ना।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स ऑल.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बाहरी सहारे से पहले खुद के अंदर फेथ होना इतना जरूरी क्यों होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: बीमारी में सिस्टर क्या होता है कि हमारा शरीर है तो हम समझते हैं, हम देख रहे हैं कि भैया प्रभाव है या नहीं, लेकिन जहाँ तक फेथ की बात होती है, क्योंकि हम फेथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर जो मिलने वाली चीज़ होती है ना, वो हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। ये एक्सपीरियंस है जो ओवर ए पीरियड टाइम हमको समझने में आता है। तो उस केस में क्या होता है, बाय द टाइम वी रियलाइज कि हम गलत पाथ पे निकल आए, शायद बहुत देरी हो जाती है या हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम तो उनके भरोसे निकले हैं, वो जहाँ ले जा रहे हैं हम जा रहे हैं, तो कैसे समझें।
4: नहीं, पता तो चलता है, समय लग सकता है। जैसे अभी आप डॉक्टर के पास भी तो फेथ से तो जाते हो
3: कि ठीक कर देंगे।
4: हाँ, कोई भी आप डॉक्टर के पास ऐसे थोड़ी ना जाते। आप कितने आपके गलत एक्सपीरियंसेस लोगों के होते हैं, तभी तो आजकल कहते हैं सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन। पर आप जाते तो उसी फेथ से है ना, कि हम उसके सामने जाके सरेंडर होते हैं कि वो हमें ठीक कर देंगे। लेकिन फिर जर्नी में कई बार आपको एक्सपीरियंस होता है कि नहीं, ये तो गलत हो गया मेरे साथ। ऐसे ही आप किसी के ऊपर भी फेथ रखते हैं। आप कैसे फेथ रखते हैं, कम से कम 10, 20, 50 लोग आपको कहते हैं कि नहीं, हम जब इनके मत पर चले तो हमें बेनिफिट हुआ, हम इस हायर पावर से कनेक्ट हुए तो हमारे अंदर की बीमारी ठीक हुई। देखो, देयर इज नो अदर वे। आप किसी के पास भी कैसे जाते हैं, जब कई लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमें बेनिफिट हुआ, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। अल्टीमेटली आप अपने एक्सपीरियंस से ही डिसाइड कर सकते हैं।
3: सही बात है।
4: तो वो एक्सपीरियंस जो हमारी बीमारी अगर ठीक हो रही है, तो वो जो गाइड है वो हमारे लिए ठीक है।
3: तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि झुकना कमजोरी नहीं है, और सही वक्त पर निकल जाना हार नहीं है, लेकिन असली समझदारी इसमें है कि हमको ये पता चले कि कहाँ झुकना और कहाँ निकलना है।
4: What I'm trying to say is, दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है जो हम कह रहे हैं कि हम उस यात्रा पर निकल जाते हैं और फिर रियलाइज करते हैं कि ये हमारे लिए वर्क करता है कि नहीं। उससे पहले भी जो एक जज करने का फैक्टर होता है, मन राइट रॉन्ग को जज करने का परख शक्ति जिसको हम कहते हैं, एट ए वाइब्रेशनल लेवल ऑल्सो। कभी कभी अगर आपके मन के अंदर क्लटर नहीं है, तो आप सामने वाले के वाइब्रेशन से भी आपको पता चल जाता है कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। कितनी बार हम लोग भी कह देते हैं ना, नहीं ये तो हमें ढोंगी लगता है, ये तो हमें रियल नहीं लगता है, ऑथेंटिक नहीं लगता है। क्यों? वो बोल बहुत अच्छा रहे होते हैं, पर वो चीज उनके संकल्प में नहीं है, उनके एक्शंस में नहीं है, उनकी एनर्जी में नहीं है, तो आपको वो कन्विंसिंग नहीं लगता है।
3: सही बात।
4: लेकिन अगर वो उनके जीवन में भी उतरावा होगा
3: तो फिर आप फील भी करेंगे।
4: आप फील करेंगे, उनके शब्दों के अंदर भी एक अलग प्रकार की अथॉरिटी होती है।
3: सही बात।
4: नम्र अगर वो उनके जीवन में भी उतरावा होगा
3: तो फिर आप फील भी करेंगे।
4: आप फील करेंगे, उनके शब्दों के अंदर भी एक अलग प्रकार की अथॉरिटी होती है।
3: सही बात।
4: नम्रता भी होती है,

0: Energy, it's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची, it's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर जो इंसान आपको गाइड कर रहा हो वो ही गलत दिशा दिखाने लगे तो ऐसी सिचुएशन में सही फैसला कैसे ले, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे लोगों के संगत में आ जाते हैं जो शायद आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि शुरू में आपने जैसे कहा हमारे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन ही होता है, विजडम नहीं होता। विजडम किसी का गाइड करने पर धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। अब जो आपको गाइड करने वाला हो, कई बार हमने देखा है बहुत सारे हेड्स ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स हैं या बहुत सारे बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो गलत रास्ते पे भी निकल जाते हैं। तो आपको गाइड करने वाला ही अगर आपको गलत दिशा ले जाए, हमें कब समझ में आना चाहिए कि भैया अब इनको फॉलो नहीं करना चाहिए, अब निकल लेना चाहिए?
4: देखो, जब दवाई खा रहे हैं तो बीमारी ठीक होनी चाहिए। तो अगर आप किसी की भी गाइडेंस पर चल रहे हैं लेकिन बीमारी तो आप ही की है ना अंदर में, वो बीमारी चाहे विकारों की है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आप कुछ तो खत्म करने के लिए आए हैं, कोई तो बीमारी, क्योंकि ये बीमारी कोई बाहर फिजिकल बीमारी के तो बात नहीं चल रही है। इट कुड बी फियर, इट कुड बी वरी, इट कुड बी एंजाइटी। बीमारी ठीक हो रही है तो दवाई ठीक है, बीमारी ठीक नहीं हो रही तो वो दवाई देने वाला चाहे कोई डॉक्टर कितना भी फेमस हो या कितने भी उसने अवार्ड जीते हों, पर वो आपके लिए नहीं ठीक है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या सरेंडर करना ही आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है? आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक बार हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा था दैट सरेंडरिंग इज द हाईएस्ट वर्च्यू, और मैंने देखा है कि कोई भी शैली हो, कोई भी आप संगीत हो, रिश्ता हो, स्पोर्ट्स हो, वो कंप्लीट सरेंडर मांगता है। लेकिन कई बार इंसान को ये समझ में नहीं आता कि सरेंडर कहाँ करना और रिजिस्ट कहाँ करना है, क्योंकि हमें यह भी सिखाया जाता है कि हर चीज़ में सरेंडर करना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एडिक्शन है तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव चीज़ों में आप रिजिस्ट करो, पॉजिटिव चीज़ों में आप सरेंडर करो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे रास्ते आते हैं जहां आपको ये समझ में ही नहीं आता कि अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आपको गाइड करने वाले आपको ये सीख नहीं देते। तो ये कैसे समझा जाए कि कहां सरेंडर करना है और कहां रेजिस्ट करना है?
4: सी, पहले तो राइट और रॉन्ग की जो समझ है उसमें सरेंडर रेजिस्ट यूज नहीं होता, वो तो एक इंटेलेक्ट की क्लैरिटी है कि ये राइट है कि रॉन्ग है। नाउ आफ्टर मूविंग ऑन द पाथ ऑफ राइट, अब आप कभी कभी तो जहां तक आप कंट्रोल कर सकते हैं आप कंट्रोल करते हैं, व्हाट इज इन योर कंट्रोल। नाउ जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आउटकम है, आप वहाँ सरेंडर करते हैं।
3: जी बिल्कुल।
4: लोग कहाँ सरेंडर कर पाते हैं? जब आउटकम आता है तो ये ऐसे होना चाहिए था, ये मुझे मिलना चाहिए था, ये क्रेडिट इसको चला गया। तो जो चीजें कंट्रोल में नहीं है वहाँ सरेंडर, हैविंग कंप्लीट फेथ कि इसके अंदर बेनिफिट है, और जो आपके कंट्रोल में है भले उसको कंट्रोल करें।
3: हाँ, तो इसमें एक ब्यूटीफुल जापानीज ट्रेडिशन है, टेक्निक बोल सकते हैं, उसको कहते हैं शूहारी, और इसके 3 स्टेप्स होते हैं। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो शू होता है वो स्टेज जहाँ, या वो लेवल जहाँ पे आप अपने गुरु की हर बात माने। जैसे कराटे किट भी अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी वो बेसिकली वो शू का ही तरीका है कि भाई जो बोलें बिना क्वेश्चन किए आप उनकी बात माने, तो वो होता है शू। हाँ होता है जब आप नियमों को तोड़ना सीखते हैं और अपना तरीका जो है वो खोजते हैं। तो कई बार संगीत में भी होता है, हम सीखते सीखते अपनी एक सुर निकाल लेते हैं, अपना एक घराना बना लेते हैं, तो कई बार हम देखते हैं। और री जो होता है वो ये होता है कि आप गुरु से भी आगे निकल गए और आपने अपनी शैली रच ली। तो ये शूहारी ब्यूटीफुल जापानीज ट्रेडिशन है। तो पहले है सरेंडर, फिर है एक रूल को तोड़ना, और तीसरा ही अपना ही रास्ता निकाल लेना।
4: बट ये अपने आप होता है, इट इज नॉट समथिंग दैट यू डू कॉन्शियसली। आपको गाइडेंस भी लगती है,
3: बिल्कुल,
4: वो गाइडेंस ही आपको स्ट्रेंथ देती है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, और तो ही आपका कुछ एक जो फल आप कहें या जो छवि बन करके निकलती है। बट इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस दैट हैपेंस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं बल्कि ईगो को छोड़कर सच को अपनाना कैसे होता है, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: यू नो, एक कमाल की किताब है द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। ये किसने लिखी है मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट इज बेस्ड ऑन अ पर्सन जो बिलियन डॉलर कंपनी बाद में खड़ा करता है, लेकिन वो बिलीव करता है कि सरेंडर का मतलब हार नहीं होता, और बहुत कमाल की ये किताब है। तो हर बार सरेंडरिंग टू द फ्लो इज नॉट नेसेसरली लूजिंग आउट टू ऑप्शंस।
4: सरेंडर इज द बिगेस्ट वर्च्यू। सरेंडर में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, सरेंडर वीकनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। सरेंडर का मतलब है कि यू आर नाउ रेडी टू, जो हायर पावर या हायर प्लानिंग या डिवाइन प्लानिंग है, आप उस चीज को भी समझ करके अपनी डिजायर को सरेंडर कर रहे हैं, सो दैट यू कैन बोथ अलाइन, और जो एक्चुअली बेस्ट है वो होगा और आप उसके लिए तैयार है। नहीं तो सरेंडर के बीच में हमारी डिजायर आ जाती है, आई वॉन्टेड टू बी डन माई वे, माई वे इज ऑल्सो गुड, बट वॉट इज द डिवाइन प्लानिंग इज गोइंग टू बी द बेस्ट। तो सरेंडर तो बहुत जरूरी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
3: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इन टू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
10: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
11: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर आप भी मिलेनियल जनरेशन से हैं, तो ये बात आपके नजरिए को बदल सकती है। आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, अद्वैत का जो सवाल है, मुझे कभी कभी लगता है कि वो जो 80s 90s में जो बच्चे बड़े हुए ना, वो कभी कभी बहुत ट्रैप्ड फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जनरेशन में ऐसा होता था, लेकिन आज के बच्चे बोलते हैं आपका जनरेशन है नहीं, और उनके लिए वो साधन नहीं रहे, क्योंकि जिंदगी बहुत बदल गई है। एक तो जॉइंट फैमिली नहीं रही, और दूसरी बात है कि बहुत सारा इंटरनेट आके, सोशल मीडिया आके, उन्होंने बहुत कुछ अलग कर दिया। तो कभी कभी वो जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आई थिंक मिलेनियंस के लिए बहुत दिक्कत है, बिकॉज दे आर द लास्ट जनरेशन जिन्होंने अपने पेरेंट्स को भी सुनी और अपने बच्चों को भी सुन रहे हैं।
4: आई थिंक मिलेनियंस प्रोबेबली क्योंकि उन्होंने कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लिया था, पर आज अगर वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो वर्क नहीं करता है। आई थिंक उन्होंने भी जब कंट्रोल एक्सेप्ट किया था तो वो भी सफोकेट होते थे, बट कम्युनिटी सिस्टम बहुत था,
3: इसलिए वो बैलेंस आउट हो जाता था।
4: हाँ, क्योंकि क्वेश्चनिंग थी ना, चाहे आप ज्वाइंट फैमिली की बात कर रहे हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल की बात कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल कितनी बड़ी क्वेश्चनिंग थी। समझो आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको कह भी दिया, शाम को 5-10 दोस्त इकट्ठे हुए, अपना फ्रस्ट्रेशन उन्होंने निकाला, एंजॉय किया, खत्म हो गया।
3: वो हमारा सोशल मीडिया था,
4: वो हमारा सोशल मीडिया था। तो फ्रेंड्स की क्वेश्चनिंग थी, ग्रैंड पेरेंट्स की क्वेश्चनिंग थी, ज्वाइंट फैमिली की थी। अब क्या हो गया है, वो कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं है। बच्चा अकेला अपना सोशल मीडिया के साथ बैठा हुआ है।
3: हम बहुत वीक हो गए हैं,
4: इमोशनली बहुत वीक हो गए,
3: वो इमोशन निकालने की कोई जगह नहीं है।
4: चलो कम से कम पहले, वैसे तो क्रिएट नहीं करना चाहिए, पर पहले कम से कम सप्रेस नहीं करते थे। दोस्त आपस में मिले, हंसे, खेला या किसी और चीज में इन्वॉल्व हो गए। एक्टिविटीज कितनी थी, कितना आप स्पोर्ट्स खेलते थे या आप कुछ ऐसा करते थे जो आप एंजॉय करते थे, जो आपके लिए एक मेडिटेशन जैसा ही हो जाता था, चाहे वो डांस है, गार्डनिंग है, कुकिंग है। तो वो बहुत चीजें थी जिसके कारण वो कंट्रोल का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं हुआ। आज हम वो चीज नहीं कर सकते। आज जब आप वो चीज करते हैं तो बच्चे तो डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए, कोई कोई तो सुसाइड तक कमिट कर रहे हैं। पिछले दिनों में ये रियल है, 6-8 महीने पहले की बात होगी, एक पेरेंट ने अपने बच्चे को केवल डांट दिया किसी बात के लिए। वो लेट आया था, वो बच्चा छत पर गया, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ इसी बात पे झगड़े जा रहे हैं, आपने क्यों बोला, आपको समय नहीं बोलना चाहिए था। अब हम कहेंगे इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को कुछ ना कुछ कभी ना कभी कह देते हैं, पर अब वो इतने इमोशनली वीक हो गए हैं कि वो एक्सट्रीम स्टेप उठा रहे हैं, तो इसलिए अब कंट्रोल काम नहीं करता। तो जब कंट्रोल काम नहीं करता तो फिर दूसरा तरीका क्या है, इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना, एक्सेप्ट करना। तो इधर वो अपने इमोशनल स्ट्रांग बनाए तो आपके तरीके कंट्रोल वाले काम करेंगे, अगर वो इमोशनली वीक हैं तो फिर हम वो तरीका यूज नहीं कर सकते।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com. अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
4: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी, टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन demand healthcare careers.
5: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए

0: अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
1: सिस्टर काजल ने एक सवाल लिख के भेजा है कि मैं 25 साल से पढ़ा रही हूँ, यानी कि टीचर है वो, और मेरे पिता की बीमारी के कारण मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। अब सास बिस्तर पर है, 1.5 साल हो गया है, अब फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि फिर से स्कूल ज्वाइन करूँ या नहीं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बस मन बहुत अशांत है।
2: मन इसलिए अशांत है क्योंकि कई बार डिजायर होती है ना, गलत नहीं है, आप पढ़ा रहे हैं गलत नहीं है, पढ़ानी अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है वो देखना पड़ता है। अगर इस समय आपको लगता है कि प्रायोरिटी अपने ओल्ड पेरेंट्स की केयर करना है
1: जी,
2: और फाइनेंशियल नीड भी नहीं है, तो वो करना चाहिए और अपने मन को समझाना चाहिए। मन जो बार बार कहता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो मजा नहीं आ रहा, बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ समबडी हु इज ऑन द बेड इज नॉट इजी।
1: एब्सोल्युटली,
2: यू आर ऑल द टाइम गिविंग,
1: लॉट ऑफ वर्क,
2: मतलब फिजिकल वर्क भी है, लेकिन जो बीमार है वो चिड़चिड़ा भी होता है, कुछ ना कुछ बोल भी देता है, आपको फिजिकली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है देने के लिए। ये कहना इजी है, बट टू बी अ केयर गिवर,
1: सही बात है,
2: केयर गिवर के लिए फिजिकली भी स्ट्रांग होना, फिर कंपैशनेट भी होना, लविंग भी होना, पेशेंट भी होना, वो हो नहीं पाते तो जो पेशेंट है उसके व्यवहार का, उसके डिस्टर्बेंस का टोल हो जाता
1: है। बिल्कुल,
2: अगर हम अपने को समझाएं और उस चीज को बहुत प्यार से करें, तो ये भी पक्की बात है कि जब आप किसी दर्द वाले व्यक्ति की सेवा करते हैं तो उससे जो दुआएं मिलती हैं वो भी दुआएं आप कहीं और नहीं कमा सकते हैं। तो अगर ये आपकी प्रायोरिटी है, आप इसको एक्सेप्ट करें, अपने मन को समझाएं, बहुत खुशी से, बहुत प्यार से उनकी सेवा करें और इस फेस को भी एंजॉय करें। ये आपको समटाइम्स वी लर्न द मोस्ट इन दीस काइंड ऑफ फेजेस।
1: एब्सोल्युटली, वेरी नाइस। और काजल जी, मैं आपको एक राय दे सकता हूँ कि खलील जिब्रान, जिसको खलील जिब्रान भी कहते हैं, उन्होंने किताब लिखी थी प्रॉफिट, और प्रॉफिट में बहुत कमाल की चीज़ कहते हैं दैट वर्क इज लव मेड इनविजिबल, और इस पे बहुत कमाल का चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही शायद वर्क है, वो ज़रूर पढ़िएगा तो बहुत सारी आपकी जो दुविधाएँ हैं वो शायद निकल जाएंगी।
3: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
4: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं।
1: हजारों लोग, एक तिरंगा एक दिल, और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026।
0: संडे ऑगस्ट 9th 1 PM ऑनवर्ड्स फ्रॉम इसलिन टू एडिसन on Oak Tree Road, featuring Lakshraj Singh Ji Maharaj, Richa Anirudh, Sanya Malhotra and more. Join the cultural fest and mela behind Umya Dham Temple.
5: It's 7 AM. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. It's 7:30 AM. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
6: Type C cable ke saath phone to charge kar loge. Khud ko kaise charge karoge? Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi. It's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, कुशल का एक सवाल आया है, वो लिखते हैं कि मुझे बहुत गिल्ट होता है, क्या करूं?
3: गिल्ट वैसे देखो बहुत अच्छा नहीं होता, एक सेकंड की रियलाइजेशन ठीक है। समझो आपने कोई किसी से आपका कोई गलत हो गया, कोई गलती हो गई, व्यवहार में गलती हो गई, तो वो एक सेकंड की रियलाइजेशन तो जरूरी है कि आप दोबारा उस चीज को ना करें।
2: सही बात।
3: लेकिन अगर आप गिल्ट में चले जाते हैं, जो कहीं रिलीजन में उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, रिपेंट करना, गिल्ट करना, पर उसकी सोच कैसे होती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने, एक माँ ने अपने बच्चे पर ही हाथ उठा दिया, फिर उसको बहुत गिल्ट हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर वो है तो नेगेटिव थिंकिंग ना, तो वो उसको डिप्लीट करेगी। रियलाइजेशन होना जरूरी था कि मेरा जो ये एक्ट है वो गलत है और मुझे दोबारा नहीं करना, लेकिन कॉन्स्टेंटली उस चीज में जाना वो आपकी सोल पावर को डिप्लीट करता है। तो अपने को उससे बाहर निकालें, हो गया, बीती सो बिंदी, फुल स्टॉप, आगे से ध्यान देंगे।
2: इसमें माया एंजेलो जो अमेरिकन पोएट और एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कमाल की एक बात कही थी और मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि डू द बेस्ट अंटिल यू नो बेटर, एंड व्हेन यू नो बेटर डू बेटर।
3: When you know better, you do better. Ignorance is not a crime, जो उसकी कंप्लीट है, आपको पता ही नहीं था। लेकिन इनका जो कई बार गिल्ट होता है ना, हमें पता होता है, हम अवेयर नहीं होते, उस समय हम माइंडफुल नहीं होते।
2: लेकिन कई बार क्या, वो गिल्ट चलता रहता है, तो उसको हटाने के लिए क्या, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करें?
3: जैसे अगर किसी को गिल्ट है, आपके परिवार में किसी को गिल्ट, किसी बात का ही गिल्ट है, तो आप उनको क्या कहते हैं?
2: कोई बात नहीं, हो गया, रहने दो, अब आगे से नहीं करना।
3: इतना ही सिंपल होता है, यही अपने को कहना होता है,
2: बस
3: इतना ही। बट ये रिपीट मोड पर कहना होता है। जैसे आप उनको कहेंगे, पर ये जो सेल्फ काउंसलिंग या सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल चीज है।
2: सही बात।
3: बार बार गिल्ट आती है, फिर आप अपने को कहते हैं मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, मैं वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, हो गया, कम से कम मैंने रियलाइज तो किया, मैं आगे से ध्यान दूंगा, आई विल ट्राई टू बिकम बेटर, फिर वो चीज आए, फिर आप रिपीट करते जाते हैं टिल यू कम आउट ऑफ इट।
2: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और मिर्ची मॉर्निंग्स जो है ऑफिशियली ऑन एयर है। अगर फिलहाल तुम ट्रैफिक में अटके हो, ट्रेन में लटके हो, या फिर किचन में चाय और जूम मीटिंग्स दोनों एक साथ मैनेज कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग रिस्पेक्ट। लेकिन एक प्रॉमिस करो कि स्ट्रेस को बैक सीट में आज बिठा दोगे, क्योंकि अगले कुछ घंटों तक सिर्फ और सिर्फ गुड मिर्चीदार वाइब्स होनी चाहिए। मस्त बॉलीवुड के बैंगर्स मैं तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूँ, देसी फील्स रहेगा क्योंकि हम देसी लोग बातें करने वाले हैं, और साथ साथ में काफी सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से करते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम योर BFF। वैसे देसी लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, एक चीज कभी नहीं बदलती है, फ्रिज में लेफ्ट ओवर्स देखकर हम सब कहते हैं यार ये कल और ज्यादा टेस्टी लगेगा। ऐसा तुम भी करते हो क्या? मैं तो जिस दिन खाना ऑर्डर करती हूँ उसे फ्रिज में रख के उसके अगले दिन उसे खाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। आई डोंट नो इफ यू डू दैट और नॉट, बट आई लव लेफ्ट ओवर बिरयानी और लेफ्ट ओवर करीज। अच्छा, आज का मिशन काफी सिंपल है, थोड़ा सा हंसेंगे, थोड़ा सा हंसाएंगे, थोड़े से गाने सुनेंगे और फुल ऑन मिर्चीदार वाइब्स फैलाएंगे। फटाक से मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची ब्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम पर, और मेरा फोन नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। यू कैन व्हाट्सएप मी हियर एंड राइट नाउ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
9: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
10: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
11: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Conditions apply.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
19: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
20: मिर्ची फ्रेश माल।
21: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स, दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो टाइम मशीन को रिवर्स गियर में डालते हैं। सबसे पहले चलते 1806 में, जब द होली रोमन एम्पायर ऑफिशियली खत्म हो गया था। एंड फिर 1825 में बोलिविया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पेन। और 1962 में जमैका ने भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। 1945 में आज के दिन हिस्ट्री का एक बहुत ही इमोशनल चैप्टर था, हिरोशिमा पर पहली बार वॉर टाइम में एटॉमिक बॉम्ब यूज हुआ था। एक ऐसा दिन जो दुनिया को याद दिलाता है कि पीस की वैल्यू क्या होती है। 1965 में अमेरिका में वोटिंग राइट्स एक्ट साइन हुआ, जिसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन वोटिंग को बैन कर दिया। और इंटरनेट लवर्स 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया की फर्स्ट एवर वेबसाइट पब्लिश की। सो टेक्निकली उसी की वजह से आज तुम और मैं मीम्स देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और रात को 2 बजे सिर्फ 5 मिनट के नाम पर रील्स देख देखकर सोना भूल जाते हैं। वैसे सोशल्स पर भी हम इसीलिए मिले हैं। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गाना बजा दूं।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early term.

0: jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
4: Celebrate Azadi with Eden Robe and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी.
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also if you have kids around you enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man brand new day. But I must give you a disclaimer, अगर तूने Spider-Man के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज YouTube पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ Spider-Man की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन Instagram @MirchiJeetuRaj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू Instagram @MirchiJeetuRaj. फॉर नाउ Spider-Man brand new day. बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज Spider-Man ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा.
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
15: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट.
16: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और चलो अब देखते हैं कि आज का वेदर का हालचाल क्या है. ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. देखो सुबह 9 बजे से सनशाइन अपनी एंट्री मारने वाला है विद 81 डिग्री फारेनहाइट. 10 बजे थोड़े से पासिंग शावर्स का चांस बन सकता है, अगेन सिर्फ 20% का. तो आज अम्ब्रेला ले जाए या नहीं इसका सस्पेंस बनाने की जरूरत नहीं, कैरी इट विद यू इन केस यू नीड इट. सुबह से टेम्परेचर 75 डिग्री फारेनहाइट से लेकर फ्लक्चुएट करने वाला है 96 डिग्री फारेनहाइट तक और 11 बजे तक वेदर हो जाएगा पार्टली सनी विथ वार्म 86 डिग्री फारेनहाइट. ओवरऑल आज का हाई रहने वाला है अराउंड 93 डिग्री फारेनहाइट तक और रात को लो जाएगा 75 डिग्री फारेनहाइट तक. ह्यूमिडिटी दिन भर 60 से लेकर 72% तक के बीच रहने वाली है और साउथ वेस्ट से विंड 5 to 8 माइल्स पर आवर आने वाली है और यूवी इंडेक्स आज के लिए है 7। इसका मतलब है सनग्लासेस और सनस्क्रीन दोनों को आज एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी, यानी कि बाहर जाते टाइम कैरी योर सनग्लासेस विथ यू, ऑल्सो योर सनस्क्रीन विथ SPF 50++++, इसे लगाना बिल्कुल मत भूलना। एंड यू कैन रीअप्लाई आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स। एंड साथ में कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, हैव अ लॉट ऑफ वाटर। और आज थ्रू आउट द डे टेम्परेचर 93 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट के जैसा फील हो सकता है। और आज बहुत ही कम लेकिन चांसेस हैं हल्की हल्की बरसात के। और साथ में अपने मिर्ची वाइब्स बनाए रखो, मुझे यानी कि प्रिसिला को अपने साथ चिपकाए रखो। मुझसे बातें कर सकते हो तुम इंस्टा और एक्स पर, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी टाइम है मिर्चीदार झमाझम बैंगर्स का। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
17: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है इस घंटे की टॉप 3 अपडेट्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनवाइटेड राघव चड्ढा एंड 42 अदर न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा एमपीज फॉर अ ब्रेकफास्ट मीटिंग इन न्यू दिल्ली। रिपोर्ट्स से इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। एंड नंबर टू पर ट्रेजिक स्टोरी कमिंग फ्रॉम एथेंस ग्रीस। ब्रिटिश चैरिटी वर्कर एलिजाबेथ जेन रॉस वॉज फाउंड डेड आफ्टर बींग रिपोर्टेड मिसिंग। ग्रीक पुलिस हैव अरेस्टेड अ सस्पेक्ट एंड द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। एंड लास्टली स्पेन से एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी। एक फार्मर को लगा कि वाइल्ड फायर में उनके 3 डोंकीज शायद बच नहीं पाए हैं, लेकिन जब वो वापस घर लौटी तो तीनों के तीनों डोंकीज सेफ मिले। यानी कि टेक्निकली वो डोंकीज थे लेकिन थे बड़े स्मार्ट। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसिला। मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर तुम भी रामायण का वेट कर रहे हो तो कैलेंडर्स निकाल लो। मेकर्स ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि फिल्म का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दुनिया भर के थिएटर्स में 6th of November 2026 को रिलीज होने वाला है, दिवाली से सिर्फ 2 दिन पहले। परफेक्ट फेस्टिवल ब्लॉकबस्टर टाइमिंग है, राइट? और एक स्वीट सा लिटिल कोइंसिडेंस भी है, ये डेट लीड एक्टर रणबीर कपूर की डॉटर राहा के बर्थडे से भी मैच करती है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं नमित मल्होत्रा, डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी और कास्ट में है सई पल्लवी एंड यश, जो कि सीता एंड रावण का रोल प्ले कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। अब एक्सपेक्टेशंस तो नेचुरली हाई होने ही वाली है। वैसे दिवाली सीजन आ रहा है, मूवीज भी, मिठाई भी और ढेर सारा स्पार्कल भी। और स्पार्कल से याद आया, तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, जहां पर तुमको मिल रहा है अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, और साथ साथ में तुम्हें पुराने गोल्ड को एक्सचेंज कराने पर, जो कि 18 कैरेट्स एंड अबव हो, उसको एक्सचेंज कराने पर 0% डिडक्शन भी मिल रहा है। ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, लेकिन ऑफर्स बहुत ही अमेजिंग है। तनिष्क का फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स चल रहा है, इसका फायदा उठाना बनता है, और अभी फायदा उठाना बनता है मिर्ची का, क्योंकि आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स ओनली फॉर यू। मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। इंस्टा और एक्स पर भी मुझे अपने साथ रखो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155. प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
12: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है.
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं बर्थडे के रॉकस्टार। अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले मिर्ची मॉर्निंग्स और मेरी तरफ से हैप्पी टू यू है, वार्म हग। एंड साथ में तुम्हारी लाइफ का वाईफाई हमेशा फुल सिग्नल पे हो, चाहे कभी भी ठंडी ना हो, कॉफी की स्ट्रेंथ कभी कम ना हो और अमेज़न के पैकेजेस आउट फॉर डिलीवरी से सीधा डिलीवर्ड हो जाए विद इन सेकेंड्स। चलो अब देखते हैं कि आज तुम्हारे साथ कौन से लेजेंड्स अपना बर्थडे शेयर करते हैं। ऑस्कर विनिंग सुपरस्टार मिशेल यो, मास्टर ऑफ ट्विस्ट एंडिंग्स एम नाइट शयमालान एंड एकेडमी अवार्ड नॉमिनेटेड एक्ट्रेस वेरा फर्मिगा, हैमिल्टन स्टार लेस्ली ओडम जूनियर और स्पाइस गर्ल्स की फॉरएवर एनर्जेटिक जेरी हालवेल यानी कि जिंजर स्पाइस। और अब बात उन लेजेंड्स की जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर करके मॉडर्न मेडिसिन को डायरेक्शन दिया, पॉप आर्ट के किंग एंडी वॉरहोल एंड टेलीविजन आइकॉन लूसील बॉल, साथ में द लेजेंडरी इंग्लिश पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और फॉर्मर यूएस फर्स्ट लेडी एडिथ रूजवेल्ट। तो अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी बर्थडे है, ये याद रखो तुम सिर्फ एक साल ओल्डर नहीं हुए हो, तुम ऑफिशियली लिमिटेड एडिशन बन गए हो। और बर्थडे हो या नॉर्मल डे हो, केक खाने का रीजन ढूंढना बस एक टैलेंट की तरह है। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें अपने बर्थडे शाउटआउट्स देने हैं खुद के लिए या किसी और के लिए तो डीएम कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Iselin।
11: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings और अब हम सुनेंगे गोल्ड आजकल क्या कर रहा है.
2: Raj wishes everyone happy and healthy morning. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,080 $4,080 पर ट्राउस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं. हम आपको रोज सुबह गोल्ड की मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपडेट कराते हैं. जैसे पिछले साल आज ही के दिन अबाउट $3,300 गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे थे और इस साल के बिगनिंग में अबाउट $5,600 पर ट्राई औंस ट्रेड कर रहा था. डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट बनता है इस करेक्शन के साथ जब गोल्ड $4,080 पर ट्राई औंस ट्रेड कर रहा है. इससे पहले गोल्ड और वापस एग्रेसिवली अपवर्ड ट्रेंड ले, राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड बार्स में 1 ounce, 10 ounce, 100 grams और किलो बार पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स में इन्वेस्ट करने के लिए राज ज्वेल्स की टीम के साथ कनेक्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग.
1: गोल्ड का हाल चाल पता किया हमने अभी के अभी मिर्ची मॉर्निंग्स पर सिर्फ और सिर्फ प्रिसिला के साथ. मुझे फॉलो कर लो इंस्टा और एक्स पर भी. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
0: दिस गोल्ड अपडेट is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है इस घंटे की टॉप 3 अपडेट्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले अमेरिका में विस्कॉन्सिन के एक 69 ईयर ओल्ड जेंटलमैन ने स्टोर जाने के लिए कार नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। जब पुलिस ने पूछा क्यों तो उनका सिंपल सा जवाब था कि ड्राइव बहुत लंबी थी। अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं। नंबर 2 पर कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास ने क्लेम किया है कि कुछ यूट्यूबर्स एंड मीडिया चैनल्स उनके घर में घुस के अंदर के विजुअल्स दिखा रहे हैं। उन्होंने इसे अपनी और अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए सीरियस कंसर्न बताया है। अभी इस मैटर पर उनके क्लेम्स सामने आए हैं, लेकिन अगर इस मैटर में कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स या इन्वेस्टिगेशन होता है तो आई विल कीप यू पोस्टेड। एंड लास्टली, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम थाईलैंड, 24 ईयर ओल्ड फुटबॉलर सोफवान अहवे लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग ड्यूरिंग अ मैच। Several others were also injured and received medical treatment. It's a sobering reminder that nature can change everything in a split second. Our condolences to everyone affected. Aur bas, that's it for Mirchi Hour ka 3. Mujhse connect karne ke liye, Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number hai 9033Mirchi. That's 9033-647244. Stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक.
8: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
9: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
10: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well-child visits.
9: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: Celebrate Azadi with Eden Row and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids, and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey, or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Row, a legacy of style.
13: Listener mein back to back gana sunega.
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स का राशि जोन। देखते हैं कि आज क्या कहते हैं हमारे सितारे।
2: मिर्ची राशि जोन,
1: इट इज यानी कि मेष राशि। हेल्थ और सेविंग्स दोनों पर फोकस करो, नया इन्वेस्टमेंट होल्ड करो, पहले वॉलेट की हेल्थ का चेकअप ले लो थोड़ा सा। लकी कलर फॉर यू इज क्रिम्सन रेड, लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, सरप्राइजेस तुम्हारे फेवर में है, एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज या प्लान तुम्हारी स्माइल का रीजन बन सकता है। लकी कलर फॉर यू इज लाइट ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, ऑफिस में पेशेंस तुम्हारा सुपर पावर है, गॉसिप से दूर रहो, ग्रेस के साथ स्कोर करोगे तुम। कलर इज येलो, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, करियर के स्पीड ब्रेकर्स धीरे धीरे हट रहे हैं, बॉस साइलेंटली नोटिस भी कर रहे हैं, तो बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। लकी कलर इज सिल्वर, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, आज आइडियाज पिच करने का परफेक्ट डे है, इनबॉक्स भी क्लीन करो और घर का वो बाद में करेंगे वाला कॉर्नर भी क्लीन करो। क्लीन रूम इज इक्वल टू क्लीन मूड। लकी कलर फॉर यू इज येलो, लकी नंबर इज 5। वर्गो यानी कन्या राशि, आज इम्पल्स शॉपिंग और इम्पल्स डिसीजन दोनों से डिस्टेंस बना के रखो, थोड़ा सा पेशेंस, बहुत सारी पीस तुम्हें मिलने वाली है। लकी कलर इज नेवी ब्लू एंड लकी नंबर इज 5। अभी तक अगर तुम्हारी राशि नहीं आई है, दैट मींस आई विल ब्रिंग राशि जोन नंबर 2 इन जस्ट अ व्हाइल। तब तक तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स मैं प्ले करती हूँ, तुम जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। ये रहा राशि जोन पार्ट टू।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, आज तुम्हारा चार्म फुल वॉल्यूम पर है। नेटवर्किंग हो, डेट हो, क्रिएटिव आइडिया हो, शाइन करने का टाइम तुम्हारा ही है। लकी कलर फॉर यू इज पेस्टल पिंक। लकी नंबर इज 7। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, किसी की हेल्प करोगे तो गुड कार्मा डबल स्पीड से रिटर्न आएगा और साइड हसल का भी एक इंटरेस्टिंग क्लू मिल सकता है। लकी कलर फॉर यू इज डीप मरून। लकी नंबर इज 9। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज फीडबैक को पर्सनली मत लेना, प्रोफेशनली लेना, हो सकता है वही तुम्हारा नेक्स्ट लेवल अनलॉक कर दे। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल। लकी नंबर इज 3। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स को म्यूट कर दो, हर डिबेट जीतना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी पीस ही ट्रॉफी होती है। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक। लकी नंबर इज 8। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, माइंड क्रिस्टल क्लियर है, करियर प्लानिंग, फ्यूचर गोल्स और स्मार्ट मनी डिसीजन के लिए ग्रीन सिग्नल है। लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ब्लू। लकी नंबर इज 4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसीज यानी कि मीन राशि, दिल की हार्ड ड्राइव थोड़ी सी क्लीन करो यार, किसी ट्रस्टेड दोस्त से बात करो या फिर जर्नल में लिखो, इमोशनल बैगेज भी कभी कभी डिलीट करना पड़ता है दोस्त। लकी कलर फॉर यू इज सी फॉर्म ग्रीन। लकी नंबर इज 7। एंड दैट वॉज योर राशि जोन पार्ट टू। ये याद रखना, स्टार्स जो है ना वो डायरेक्शन देते हैं तुम्हें, डेस्टिनेशन पर तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बिकॉज इट्स स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड स्पाइडरमैन रेस्ट्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ नेड अर्थात जेक बैक्सनो ऑल्सो एमजे अर्थात ज़ेंडाया एंड पीटर पार्कर यानी टॉम हॉलैंड इन दिस फिल्म इट्स अ लिटिल डिफरेंट इन फैक्ट आई कैन गो अहेड एंड टेल यू कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ज़ेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: नो
9: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप 1213 न्यू जर्सी 27 सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप 700 हैरिस एव मिडिलसेक्स इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर यू आर इन गुड हैंड्स
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं रिश्ते निभाने पड़ते हैं ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इज़लिन न्यू जर्सी
12: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन
14: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी हर ड्राइव बनेगी यादगार
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है पर बच्चन एक ही होता है
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है
17: एक ही होता है
18: Always,
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: And बस गाइज, आज का मिर्ची मॉर्निंग्स जो है यहीं पर रैप अप होता है। मेरा नाम है प्रिसिला, और अगर तुम्हारे कम्यूट में आज एक स्माइल मेरी वजह से आई है, ट्रैफिक थोड़ा सा बेरेबल लगने लगा, या ऑफिस पहुंचने से पहले मूड थोड़ा सा इतू सा बेटर हो गया है, तो मेरा मिशन तो अकम्पलिश हो गया है। लेकिन अभी एक चीज और बाकी है। जाने से पहले तुम्हें क्विक अपडेट देकर जाती हूँ। अगर तुम हेल्थ केयर फील्ड में करियर बनाना चाहते हो या करियर स्विच का सोच रहे हो, तो एम्स एजुकेशन के साथ फ्लेबोटमी टेक्नीशियन बनने की ट्रेनिंग सिर्फ एक महीने में शुरू की जा सकती है। प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑन कैंपस भी। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करो 9082222002, या फिर विजिट करो aimseducation.edu पर। हो सकता है आज का एक डिसीजन कल की नई करियर स्टोरी बन जाए। और हाँ, रेडियो ऑफ हो सकता है, लेकिन बग बग कभी ऑफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझसे कनेक्टेड रहो। मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए डाना बाबा है, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस एंड सेम फ्रीक्वेंसी। यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: बचपन में ना जहां कहीं मुझे ट्विन्स के बारे में पता लगता था कि वो मेरे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, आई यूज्ड टू बी रियली एक्साइटेड टू सी देम।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. Yes, the concept of twins ना, it used to be very, very new for me. क्योंकि इतने आम तरीके से हमें twins देखने को नहीं मिलते थे ना। हमें जो देखने को मिलता था 90s की movies में, that was double role. Twins का concept नहीं पता था हमको। हमको बस ये पता था कि एक बंदा एक दुनिया में जी रहा है और एक बंदा दूसरी दुनिया में जी रहा है, लेकिन दोनों की शक्लें एकदम सेम है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, ट्विंस भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की शक्लें एक दूसरे की जैसी बिल्कुल डिटो कट कॉपी पेस्ट है। तभी तो 90s के बॉलीवुड ने ऐसे थोड़ी ना दिल में घर कर लिया था, जहां हमें डबल रोल का कॉन्सेप्ट पहले पता लगा और ट्विंस का कॉन्सेप्ट बाद में पता लगा बॉस। तो चलो फिर आज ना मैंने सोचा है कि मिड डे मोहब्बत में बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं जहां पर डबल रोल देखने को मिले थे। और बॉलीवुड में ये कोई बड़ी बात थी कि 90s के दौर में हमें डबल रोल देखने को ना मिले किसी फिल्म में, हर दूसरी तीसरी फिल्म में डबल रोल हुआ ही करता था बॉस। तो आज कौन कौन सी फिल्में आर ऑन द लाइन आपको पता लगेगा इन अ वाइल, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कह देती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स ऑल।
3: गोली मार भेजे मैं, ये भेजा शोर करता है।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: दो जुड़वा बहनें, जिनमें से एक बिल्कुल सीधी सादी और दूसरी एकदम तेज तरार। एक जो थी वो महलों में रहती थी लेकिन ऐश नहीं करती थी। दूसरी जो थी वो बस्ती में रहती थी लेकिन आराम से ऐश करती हुई रहती थी। और ये जो फिल्म है ये है लाइन में लगी हुई, बिकॉज आज डिस्कस होने वाले हैं बॉलीवुड के डबल रोल्स।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and the movie that I'm talking about is चालबाज। ये वो चालबाज है which was most talked about in the 90s। श्रीदेवी ने क्या काम किया ना, and as a double role वाला character, उन्होंने और ही धमाकेदार काम किया। मतलब श्रीदेवी में भी एक पर एक मुफ्त। बट यू नो, इस मूवी के पीछे एक बड़ी बढ़िया सी कहानी है और वो कहानी बोनी कपूर से रेलेवेंट है। ऑफ कोर्स एट दैट टाइम बोनी कपूर और श्रीदेवी का कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन एट दैट टाइम अनिल कपूर और बोनी कपूर, इन दोनों ही लोगों को जब पता लगा कि चालबाज सनी देओल के साथ अनाउंस हो गई है, तो ये दोनों पहुंचे सीधे फिल्म मेकर्स के पास। अब हुआ ये था कि ये वो दौर था जब बोनी कपूर और अनिल कपूर फॉर सर्टन रीजंस बिल्कुल फिल्में नहीं ले रहे थे। उन्होंने जितना भी साइनिंग अमाउंट अगर किसी फिल्म का लिया भी था ना, वो भी वापस दे दिया। लेकिन इसी दौरान जब इन्हें चालबाज के बारे में पता लगा, तो ये प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचे कि यार अनिल कपूर को साइन कर लो इस फिल्म के लिए और सनी देओल को बाहर कर लो। जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, सनी देओल ने इतनी अच्छी और हिट फिल्म दी है पाप की दुनिया, उसी के बाद तो हमने सनी देओल को इस फिल्म के लिए लिया है। लेकिन अनिल और बोनी कपूर तो अपने प्राइसेस भी कम करने के लिए तैयार हो गए, ताकि प्रोड्यूसर जो है वो टेम्प्ट हो जाए कि सनी देओल को बाहर कर दें और अनिल कपूर को इन। फिर भी प्रोड्यूसर नहीं माने और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सनी देओल को ही रखेंगे इस फिल्म के लिए, क्योंकि उन्होंने सनी देओल के साथ तो 3 फिल्म्स का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। सो ही हैड नो इंटेंशंस ऑफ ड्रॉपिंग हिम आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहां अनिल कपूर, जिनको लगा था कि ये फिल्म उनके हाथ में आएगी, वो आई नहीं। एक तरफ अनिल कपूर और बोनी कपूर इस बात को लेकर सैड हो गए थे, और दूसरी तरफ इस फिल्म के डायरेक्टर पंकज पारशर वाज आल्सो सैड वंस अपॉन अ डे ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस फिल्म। हुआ ये था कि वो जो रोहिणी हतंगड़ी जी के साथ सीन नहीं था श्रीदेवी का, जहां पर वो रोहिणी जी के चेहरे को एकदम पोत देती है बुरी तरीके से, वेल उस सीन के टाइम पर द डायरेक्टर पंकज पारशर वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द मेकअप जो रोहिणी जी का किया गया था। वो मेकअप वैसा लग ही नहीं रहा था जैसा लगना चाहिए था। तो हुआ ये कि श्रीदेवी ने खुद डिसाइड किया कि वो अपना मेकअप किट लाएंगी और फिर खुद ही रोहिणी जी का फेस जो है उसको पेंट करना शुरू कर देंगी। तो जो हम ये सोच के बैठे थे आज तक कि रोहिणी जी का जो पेंट फेस हुआ हुआ है वो किसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया होगा और श्रीदेवी सिर्फ एक्टिंग करी है उनका मेकअप करने की, तो ना जी, वो मेकअप श्रीदेवी ने ही किया था रोहिणी जी के चेहरे पर। इसे कहते हैं श्योर प्रोफेशनल। और सीता गीता की ये रीमेक हम सबके दिलों में घर कर गई थी, नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। Mirchi, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
3: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
4: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी.
5: Inefficient,
6: very complex,
7: clumsy और
8: confusion ही confusion.
4: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अच्छा ये बताओ, एक और एक क्या होते हैं? अगर आपकी बॉलीवुड की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 11, और अगर आपकी मैथ की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 2, लेकिन मैं बोलूंगी जुड़वा।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मिडडे मोहब्बत पर आज मेरे यारा हम बात कर रहे हैं 90s की वो फिल्में जहां पर डबल रोल थे, यानी कि एक के साथ एक मुफ्त, और उसमें से एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट इज जुड़वा। मतलब मैंने 2 तो नहीं देखी, लेकिन मैं 1 में इतनी खोई हुई थी ना कि मुझसे 2 देखी नहीं गई। एक्चुअली बात ही थी, मगर यार मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर जुड़वा में सलमान खान ना होते तो क्या होता। मुझे ये फिल्म शायद इतनी पसंद भी नहीं आती। आई वॉज अ डाई हार्ड सलमान खान फैन एट दैट टाइम। हाँ, लेकिन एट दैट टाइम एक्चुअली ये फिल्म सलमान खान करने भी नहीं वाले थे, ये फिल्म तो गोविंदा करने वाले थे। एंड ही वॉज डूइंग दिस फिल्म विद अ फिल्म मेकर जिनका नाम था नंदू तोलानी, एंड डेविड धवन वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ऑफ कोर्स। लेकिन सलमान खान को जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा तो उन्होंने गोविंदा से रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट टू मी एंड साजिद नादियाडवाला। गोविंदा ने हाँ कर दी, एंड दिस इज हाउ सलमान एंडेड अप डूइंग जुड़वा। हालांकि डेविड धवन जो थे उनको बड़ा डाउट हुआ करता था कि सलमान इस तरीके की फिल्म पुल आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमेडी की जरूरत थी यार, और बेतहाशा कॉमेडी की जरूरत थी, वो भी डबल रोल के साथ। ये सलमान खान का पहला डबल रोल था यार, तो डेविड धवन थोड़े से नर्वस थे इस चीज को लेकर। लेकिन जब उन्होंने फिल्म का आउटपुट देखा तो वो खुद हैरान थे कि ये सलमान खान ने क्या कर डाला यार। इनफैक्ट सेट्स पर ये मजाक तो क्रू मेंबर्स भी किया करते थे कि कभी कभी सलमान खान अपने कैरेक्टर राजा की एनर्जी के साथ प्रेम के सीन्स की शूट्स कर लिया करते थे, क्योंकि इन दो कैरेक्टर्स, एक टपोरी स्टाइल राजा और दूसरा मासूम सा प्रेम, इन दोनों ही कैरेक्टर्स का जो शिफ्ट होता था वो बड़ा ट्रिकी हुआ करता था। तो ऐसा भी हुआ करता था। हे बाय द वे, आपको एक अंदर की बात बताऊं, इस फिल्म में रंभा जो सीधे साधे सलमान खान के ऑपोजिट हैं, आपको पता है उनकी आवाज उनकी नहीं है, तबू ने उनकी आवाज इस फिल्म में डब की थी। हाँ जी, कमिंग अप मोर इन्फोज ऑन 90s की डबल रोल वाली फिल्में इन अ व्हाइल। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सुनील शेट्टी कॉमेडी भी कर सकते हैं,
2: ये बात तो हमको तब पता लगी जब हमने देखी गोपी किशन।
3: क्योंकि ये कौन बोला?
4: मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप।
2: और इसी फिल्म से तो ये फेमस डायलॉग आया था जो आज तक भी एपिक लाफ्टर की वजह बन गया है। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड डे मोहब्बत पर 90s के डबल रोल्स की चर्चा हो रही है, जिसमें से सुनील शेट्टी का ये डबल रोल तो किसी को नहीं भूलता यार, एक गोपी का और एक किशन का।
1: बोलो गोपी, टेल टेल।
2: वेल, इससे पहले एक्चुअली सुनील शेट्टी जो थे ना, वो एक्शन हीरो ही थे, तो इसीलिए सबको डाउट था यार कि ये कॉमेडी भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या कॉमिक टाइमिंग थी यार उनकी, मतलब वो मास फेवरेट हो गए थे इस फिल्म के बाद। लेकिन कॉमेडी के साथ साथ इस फिल्म में एक्शन भी था, और एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान हुआ ये था कि सुनील शेट्टी को चोट लग गई थी बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग डिले नहीं करी एंड ही कैरीड ऑन विद हिज इंजरी एंड द शूट एज वेल। लेटर ऑन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि गोपी का कैरेक्टर उनके कैरेक्टर से ज्यादा मेल खाता है या किशन का, तो उन्होंने किशन के लिए ऑप्ट आउट किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स गोपी इतना भोला भाला, दुनिया खा जाए उसको, कौन गोपी बनना चाहेगा उस दौर में भी और आज के भी दौर में। लेकिन सुनील शेट्टी गोपी बने, और क्या गोपी बने। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Meethi Supari,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करते ही ना एक खुशबू सी आती है जो तुम्हारा पैकेट खोलते ही आया करती थी। भीनी भीनी सी, मीठी मीठी सी। तुम्हें खाना हम बच्चों को वैसे अलाउड नहीं था और अक्सर मैं तुम्हें खरीदती भी नहीं थी, लेकिन कुछ दुनिया की परवाह ना करने वाले क्लासमेट्स के बैग में तुम अक्सर मिल जाया करती थी। और जब कभी कभी तुम्हें चखती थी ना, तो मजे और ज्यादा आया करते थे, क्योंकि जो कम होता है उसकी वक्त भी तो ज्यादा हो जाती है। क्या बोलती हो? तुम्हें जुबान पर रखना बुरा माना जाता था और कहते थे कि तुम सेहत को हानि पहुंचाती हो, लेकिन आज मेरी याद में तुम आंखों में पानी पहुंचाती हो, क्योंकि तुमसे जुड़े किस्से बचपन की शैतानी और दोस्तों के किस्सों के याद दिलाते हैं। थी मेरी एक दोस्त जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आया करते थे और सब उससे इसी वजह से दूर भाग जाया करते थे, लेकिन वो मस्त रहने वालों में से थी। तुम अक्सर उसी के पास पाई जाती थी और क्लास में सो कॉल्ड अच्छे बच्चे उसके बारे में खुसुर पुसुर किया करते थे। आज तुम्हें याद करते करते उसकी याद आ गई यार, कि उसके साथ जो होता था वो बॉयकॉट नहीं तो क्या था। मुझे भी बोला जाता था कि तुम अच्छी बच्ची हो, उसके टच में मत रहा करो। आज सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार इतनी कम उम्र में ये सब हमें सिखाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आज मुझे ना इस बात का भी ख्याल आता है कि कितनी हिम्मत थी यार मेरी उस दोस्त में, जो ये सब जानकर भी अपनी दुनिया में मस्त रहने की कोशिश किया करती थी। पता नहीं कि वो वाकई में स्ट्रांग थी या स्ट्रांग होने की एक्टिंग किया करती थी, आज तक नहीं पता लगा मुझे इस बात का। स्कूल बदला तो ना उससे टच में रही और ना तुमसे इतनी ज्यादा मुलाकात होती थी फिर, क्योंकि तुम्हें खिलाने वाला कोई था नहीं ना, लेकिन तुम दोनों ही मेरे ख्यालों में तब भी थे और आज भी हो। वो मुस्कुराती हुई और तुम महकती हुई, तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू में आज भी खोई हुई तुम्हारी पुरानी दोस्त सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: જય ગુરુદેવ. ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર પિસ્કેટવે આપને અને આપના પરિવારને ગુરુ પૂર્ણિમા અને રુદ્રાભિષેક મહોત્સવમાં સ્નેહભર્યું આમંત્રણ આપે છે. શનિવાર 1 ઓગસ્ટે સવારે 10 વાગે શિવજી રુદ્રાભિષેક અને સાંજે 5 વાગે વિરાટ દીપ યજ્ઞ. રવિવાર 2 ઓગસ્ટે સવારે 10 વાગે 251 કુંડિયા ગાયત્રી મહાયજ્ઞ, શાંતકુંજ હરિદ્વારના પૂજ્ય સંતો દ્વારા વૈદિક વિધિ મુજબ અનુષ્ઠાન અને ડોક્ટર ચિન્મય પંડ્યાજીની પાવન ઉપસ્થિતિ. 7323578200. જય ગુરુદેવ.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
6: The mortgage industry has changed over the years, par hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
11: Of the ground.
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है.
10: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeeturaj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड इन दिस फिल्म इट्स अ लिटिल डिफरेंट इन फैक्ट आई कैन गो अहेड एंड टेल यू कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
7: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोनू निगम, श्रेया घोषाल एंड सलीम मर्चेंट की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कुर्बान इज कैसेट के साइड ए का पहला गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: वेल, द ट्रैक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक गाना नहीं है, दिल का सुकून भी है. शुक्र.

you know, ये बात तो सच्ची है कि जो हम आम लोग हैं अपनी आम जिंदगी में वो लव्स कहीं कहीं से ढूंढ कर नहीं ला पाते हैं जो गानों में हमें मिल जाते हैं। नाउ ये गाना इतना खूबसूरत है और इतनी खूबसूरती से ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसने हमें उस इंसान से मिला दिया जिसे मिलने के बाद हमें सुकून मिलता है। यू नो, रूह को सुकून मिलने वाले लोग कितने कम मिलते हैं ना जिंदगी में, और जब वो मिल जाए तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए ये गाना बिल्कुल एप्ट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हमें लव्स नहीं मिल पाते हैं, हमें बस महसूस हो रही होती है कोई बात, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे लफ्जों में कैसे बयां करें। वहीं ये गाना आता है जो ये कह रहा है कि तेरी बाहों में ये जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहें अब हम जुदा। वहीं ये गाना हमारी मदद कर देता है क्योंकि इस गाने में यही तो शुक्रिया अदा किया गया है कि यार किस तरीके का सुकून मिला है एक इंसान से मिलने के बाद कि उसकी बाहों में ये जिस्म खिल गया है, उसकी सांसों में चैन मिल गया है, और कैसे रहा जाए उस इंसान से अब जुदा। तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, ऐसे हुए अब हम फिदा। और इसी बात पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया है कि ऐसी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत, हम ते मेहरबान दो जहां। एंड दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड जो हमारी जिंदगी में प्यार के आने पर हम महसूस कर पाते लेकिन उसे कह नहीं पाते। तो बस जी, ये गाना आपके दिल की बात को कंप्लीट करते हुए आप ही के लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ अब कि हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे मिल जाइएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

ये दोनों एक्टर्स ना ऑलरेडी साउथ में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मार्क नहीं बना पाएंगे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। और आज मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना, वो फिल्म मैं एक्चुअली मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद ना वो कहते हैं हैंगओवर होता है। एक्चुअली मैं इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरा मूड ऑफ होता है। तो जब भी ये फिल्म बहुत सारे यू नो चैनल्स पे आती रहती है, आई ट्राई नॉट टू वॉच दिस मास्टरपीस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सदमा। कमल हसन और श्रीदेवी जी ऑलरेडी साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन हिंदी फिल्म में दोनों ने एक साथ पहली बार इसी फिल्म से काम किया था। आज इसी फिल्म की बातें होंगी श्रेया के साथ, एंड ऑफ कोर्स सदमा के बहुत खूबसूरत गाने। तो बस कहीं भी मत जाना, कम बैक राइट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
6: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155। प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice. Celebrate Azadi with Eden Road and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab, mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.
0: Aap sun rahe hain Purani Jeans श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गुलशन ग्रोवर तो फिल्म की सिर्फ शूटिंग देखने गए थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाएगा। फिर रानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है फिल्म सदमा की, एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक ऐसी फिल्म जिसको मैं ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है मैं देख नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स देख करके ना मेरा मूड एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज खराब रहेगा। हाँ जी, सो सदमा में गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था, ये तो बाय एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब हुआ ये कि अनिल कपूर ऑलरेडी एक कन्नड़ मूवी के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं और सदमा की शूटिंग ना वहीं कहीं उनके ही सेट के आसपास होती है, तो अनिल कपूर श्रीदेवी से मिलने चले गए थे वहां पर। जब वहां गए तो भाई फिल्म के जो कैमरामैन थे जिनका नाम था बालू महेंद्र, उन्होंने गुलशन ग्रोवर को देख करके अनिल कपूर से कहा कि अपने दोस्त से पूछो क्या वो इस फिल्म में विलेन का रोल करेगा। और सोचिए, अनिल कपूर ने जैसे ही पूछा, गुलशन ग्रोवर तो उस समय उनके पास खास काम नहीं था, उन्होंने झट से हाँ कह दी एंड दैट वाज हाउ ही लैंडेड इन द रोल। पुरानी जीन्स पे सदमा के गाने होंगे और सदमा की बातें विद मी श्रेया, कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Inefficient,
4: very complex,
5: clumsy or
6: confusion.
3: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
8: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
7: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
13: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
15: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
16: It's 1:30 PM, Mirchi time check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
0: Aap sun rahe hain, Purani Jeans. श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यही फिल्म कमल हसन और श्रीदेवी जी ने पहले तमिल में की थी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। सो ओरिजिनली दिस फिल्म वाज मेड इन तमिल, उसके बाद इसको हिंदी वर्जन में बनाया गया, टेकिंग अगेन द सेम एक्टर्स श्रीदेवी एंड कमल हसन। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा। लेकिन आपको पता है, हिंदी वर्जन बनाते समय श्रीदेवी काफी नाराज थी, और वो भी खुद से। उनको लगा कि तमिल वर्जन में ना वो और कमल हसन बहुत सारे सीन्स को इम्प्रूव कर पा रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज, लेकिन हिंदी क्योंकि श्रीदेवी की मदर टंग नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी। तो श्रीदेवी सेट के हम बहुत सारे सीन्स को ना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए, जैसे डायरेक्टर बोलते गए हम बस वही करते गए। लेकिन अगर जैसा डायरेक्टर ने कहा सिर्फ उतना किया तो भी क्या खूबसूरत किया। सदमा रिमेन्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स ऑफ श्रीदेवी जी। मतलब इस फिल्म के बाद ना, अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी कितनी मंझी हुई कलाकार थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने चलते रहेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, कम बैक राइट हियर।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
4: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well-child visits.
3: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-307-0668.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
7: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
11: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: द डर्टी पिक्चर विद्या बालन की याद है आपको, ये किस पे बनी थी? साउथ की सेंसेशनल एक्ट्रेस विद्या बालन पे। अब ये साउथ की एक्ट्रेस यानी सिल्क स्मिता उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थी और क्राउड भर भर के जाता था सिनेमा हॉल में इनकी फिल्में देखने के लिए। तो भाई जब हिंदी फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर बालू महेंद्र, तो उनको लगा कि उन्हें अब सिल्क स्मिता को ना हिंदी फिल्मों वालों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हिंदी फिल्म ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। तो ही वांटेड टू शो समथिंग सेंसेशनल बिटवीन द यू नो स्टोरी ऑफ कमल हासन एंड श्रीदेवी जी। सो उन्होंने ना साउथ की इंडस्ट्री की ये फैसिनेटिंग यंग गर्ल सिल्क स्मिता को लेकर के आए। सो इनका तमिल वर्जन वाली जो फिल्म थी उसमें तो बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म में जब वो लेकर के आए, दैट वाज हर इंट्रोडक्शन, सिल्क स्मिता का इंट्रोडक्शन टू हिंदी ऑडियंस। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, वापस
1: तुमको पता है, तुमको पता है इस कॉलेज के एक लड़के और लड़की में, यू नो व्हाट आई मीन,
2: माय गुडनेस, कौन है वो, क्या नाम है उनका?
1: तुमको बता देता हूँ लेकिन देखो यानी समझी,
2: ओफो, हद है, कान में बोलो।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

इस फिल्म से एज म्यूजिक कंपोजर अपनी शुरुआत की थी इलैयाराजा जी ने, और इसी फिल्म से अपना डेब्यू इलैयाराजा के असिस्टेंट बनकर के पता है किसने किया था? डी ए आर रहमान। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, यानी श्रीदेवी जी और कमल हासन की फिल्म। इसी फिल्म से ये दोनों द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स म्यूजिक कंपोजर्स हमें मिले थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। इस फिल्म की बातें और गाने बहुत सारे आज लेकर के आई हूँ, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस. सेलिब्रेट Azadi with Eden Robe and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
11: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
12: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
11: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan एक ही होता है.
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है.
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
15: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जब बात हो फिल्म सदमा की तो ना एक जगह चुप हो जाना चाहिए क्योंकि गाना ये आ रहा है। एंड इस गाने से, यानी इस फिल्म के गानों से इलैयाराजा जी ने अपना डेब्यू किया था, और उनके असिस्टेंट पता है कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट वाज नन अदर देन एआर रहमान साहब। इतना खूबसूरत गाना ये सुदास जी ने गाया। कमिंग ओवर राइट नेक्स्ट, सुरमई अखियों। ये गाना जो है श्रीदेवी को देख करके कमल हसन गाते हैं, और श्रीदेवी के चेहरे पे इतना इनोसेंस, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये गाना शुरुआत से एंजॉय करो। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
4: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं।
5: हजारों लोग, एक तिरंगा एक दिल, और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026।
6: संडे अगस्त 9th 1 PM ऑनवर्ड्स फ्रॉम इस्लिन टू एडिसन ऑन ओक ट्री रोड, फीचरिंग लक्ष्मीराज सिंह जी महाराज, ऋचा अनिरुद्ध, सानिया मल्होत्रा एंड मोर। जॉइन द कल्चरल फेस्ट एंड मेला बिहाइंड उमिया धाम टेम्पल।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
13: It's 2:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बालू महेंद्र ने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था तो उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा था कि कमल हसन श्रीदेवी को बस देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ देख रहे हैं कि बस अब तो मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, जिसका क्लाइमैक्स ओ गॉड रोंगटे खड़े कर देता है। और इसीलिए ना, जब भी ये फिल्म आती है किसी भी चैनल पे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स ना मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिल में एकदम जगह करके रहेगा, एंड यू नो आई विल फील वेरी वेरी सैड। सो बालू महेंद्र ने तो कोशिश की थी कि बस कमल हसन सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं श्रीदेवी को, उनकी आंखों में है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और श्रीदेवी चलती जा रही है। लेकिन इट वॉज कमल हसन हु सेड कि नहीं, ऑडियंसेस के लिए ये सिर्फ एक ग्लिम्स, एक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और होना चाहिए। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन कमल हसन सेड कि मैं इस रोल, इस पूरे सीन को ना इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो जो वो ट्रेन में बैठी हैं श्रीदेवी और कमल हसन उनको उछल उछल के दिखा रहे हैं कि ये शैतानियाँ हम लोग करते थे, ये मस्ती हम लोग करते थे, और श्रीदेवी उनको यू नो कुछ खाने को देती हैं कि अरे भाई लगता है यू नो ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसको कुछ खाने को दे दें, ये सब कमल हसन ने सोचा था। और ये ऐसा सीन निकला जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक जानी जाती है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतू राज ने, वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
7: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
8: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Ital Mode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Constantini and much more.
7: What? Ital Mode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Ital Mode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
9: Ital Mode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodfurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
10: Listener mein back to back gana sunega.
11: Back to back gana sunega.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
12: Ah, hey.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: तुम्हारे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

फिर से वो टाइम आ गया जब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बिकॉज अगला गाना इज अ कल्ट सॉन्ग. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ सदमा की बात हो रही है, तो वो गाना ना हो जो जब भी हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या जिंदगी से नाराज होते हैं, निराश होते हैं, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है. सुरेश वाडकर की आवाज़ है, इलिया राजा की कॉम्पोजिशन है और गुलजार साहब ने लिखा था ये. यही गाना तमिल में, यानी जब ये फिल्म तमिल में बनी थी ओरिजिनली, तो ये तमिल की फिल्म थी जिसको हिंदी में फिर से बनाया गया था. यही गाना था पुंगात्रु पुथी नाथू, कुछ ऐसे करके, मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला, ए जिंदगी गले लगा ले. कौन लिख सकता था ये गुलजार साहब के अलावा, कि हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया. कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुराने जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

श्रीदेवी की सारी फिल्मों में से सबसे बेहतरीन मानी जाती है सदमा फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल पे लिखा होता है एक्टर का नाम। एक्चुअली मैं ये रोल पहले करने वाली थी डिम्पल कपाटिया, बट एट दैट टाइम उनके पास ना बल्क में डेट्स नहीं थी इस फिल्म को देने के लिए। दो शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म बिकॉज उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, तो उनको ना उस समय सागर के लिए रोपिन किया हुआ था सिप्पी साहब ने, एंड शी कुड नॉट गिव डेट्स फॉर दिस फिल्म। एंड देन केम श्रीदेवी जी, जिन्होंने इस रोल को चार चांद लगा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये फिल्म ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है ना, आई अवॉइड सीइंग दिस फिल्म, क्योंकि सदमा ना आपको एक सदमा दे के जाती है। इसका क्लाइमैक्स आपके साथ रहता है फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू कीप थिंकिंग अबाउट द फिल्म, यू कीप थिंकिंग अबाउट कमल हसन, यू कीप थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी जी। पुरानी जीन्स में इसी फिल्म की बातें मैं

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
6: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
5: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
6: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
7: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
8: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well-child visits.
7: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-307-0668.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तमिल में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इसका नाम था मुंद्रम पिराई, और लोगों का कहना है कि फ्रेम टू फ्रेम सेम फिल्म उठा करके रखी गई इन हिंदी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सदमा की, जो सबसे पहले तमिल में बनी, उसके बाद इसको हिंदी में बनाया गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल से, अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो से कि ये रीमेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें, इसमें एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम काम कराया था। और इसमें भाई तमिल वर्जन में भी ऑफकोर्स श्रीदेवी और कमल हसन थे, लेकिन हिंदी में किसी हिंदी फिल्म के लिए दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे थे, एंड दैट वॉज सदमा। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें आज श्रेया के साथ होती रहेंगी। इनकेस आपको मुझे सदमा के बारे में कुछ बताना है, आई एम श्योर अगर आप रेट्रो फैन हैं आपने ये फिल्म देखी होगी, तो डू शेयर योर फीलिंग्स फेसबुक और इंस्टा पे। माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHRUYA श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं।
4: हजारों लोग एक तिरंगा एक दिल और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026।
5: संडे अगस्त 9th 1 PM onwards फ्रॉम इसलिन टू एडिसन ऑन ओक ट्री रोड फीचरिंग लक्ष्यराज सिंह जी महाराज रिचा अनिरुद्ध सानिया मल्होत्रा एंड मोर जॉइन द कल्चरल फेस्ट एंड मेला बिहाइंड उमिया धाम टेम्पल।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
7: ओह नो,
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप 1213 न्यू जर्सी 27 सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप 700 हैरिस एव मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर यू आर इन गुड हैंड्स।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इसलिन न्यू जर्सी।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी के मेकर्स का ऐसा सोचना था कि सदमा फिल्म इतनी चलेगी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ इस फिल्म ने तमिल वर्जन में तो बहुत कमाल किया था, लेकिन जब इसको हिंदी में बनाया जा रहा था ना तो सबके डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे 1980s में एक तरफ बच्चन साहब की एक्शन फिल्में आ रही थी, दूसरी तरफ काका की रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसके बीच में इतनी इमोशनल फिल्म जिसका इतना डिप्रेसिव एंड हो, सो द मेकर्स थॉट कि भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं करेगी, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड उस समय नहीं आया, लेकिन हाँ इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस लिया। एंड स्पेशली आज के दौर में दिस फिल्म इज अ माइलस्टोन दैट एक्चुअली श्रीदेवी जी एंड कमल हसन अचीव्ड। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, कहीं भी मत जाना।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batlow, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स

0: Enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने Spider-Man के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज YouTube पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ Spider-Man की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन Instagram @MirchiJeeturaj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ Spider-Man ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज Spider-Man ब्रांड न्यू डे, रिकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
7: It's 3 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. It's 3:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
8: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar. मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा.
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

की टाइम। थर्स्टी का वाइब जब आता है ना, अंदर से एक अलग ही स्पार्क ऑन हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है, स्टेप्स थोड़े फास्टर हो जाते हैं, थॉट्स थोड़े शार्पर हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस थोड़ा लाउडर हो जाता है। यार जैसे कि ना फेवरेट सॉन्ग का पहला बीट ड्रॉप हुआ हो और बॉडी ऑटोमेटिकली मूव कर जाए। और पता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यार थर्स्डे आते आते ना प्रेशर पीछे रह जाता है, पॉसिबिलिटीज आगे आ जाती है, काम भी थोड़ा बहुत हो चुका होता है पर उसके साथ एक एक्साइटमेंट भी छुपी होती है। जी हाँ, आज का दिन इंटरेस्टिंग तो है ही, क्योंकि एक दिन और वीकेंड आने ही वाला है। तो आप भी बताइए कि आपका स्पार्क किस चीज से आया है आज, टेल मी ऑन इंस्टेंट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा स्पार्क तो हमेशा आपके लिए धमाकेदार गाने बजाने से ही आता है। तो चलिए इवनिंग का पहला गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Yabala. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी, नमस्कार। जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
3: हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बचा जाएगा?
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाला एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़े जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाला चलाएगा?
2: हेलो हेलो,
3: मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन करे तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया आप मेरे
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
12: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
13: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
17: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
18: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
17: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
19: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: Goalie goes down the ground, goalie goes out of the ground.
19: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
19: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
19: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
0: दोस्तों, कभी नोटिस किया है कुछ यादें ना हम याद नहीं करते, वो खुद ही हमें ढूंढ लेती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज ड्राइव करते करते अचानक मुझे बचपन की वो विंडो सीट याद आ गई। जी हाँ, वही विंडो सीट जिसके लिए कार में बैठते से ही हम झगड़ा करते थे कि यार विंडो सीट तो मेरी है बॉस, और फिर पूरा सफर बस बाहर देखते हुए निकल जाता था। कभी पेड़ उल्टे भागते थे, कभी हम इलेक्ट्रिक पोल्स काउंट करते थे, या कभी बादलों में हाथी या फिर रैबिट बना देते थे, और हवा को हाथ से पकड़ने की वो बचकानी कोशिश भी ना इतनी सीरियस लगती थी तब, क्योंकि तब ना रोड ट्रिप्स का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं था, सफर भी उतना ही एक्साइटिंग होता था। वैसे आज भी हम सब ड्राइव टाइम पे ही होते हैं, लेकिन नजर थोड़ी सी बदल चुकी है। जीपीएस बोल रहा होता है, फोन ब्लिंक कर रहे होते हैं, और बाहर का व्यू कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज जब घर जा रहे हो और रेड लाइट पे गाड़ी थोड़ी देर रुके ना, तो एक बार फोन को थोड़े साइड में रखकर विंडो के बाहर जरूर देखना। हो सकता है कोई पुरानी रोड ट्रिप, कोई फैमिली वेकेशन या बचपन की वो विंडो सीट बिना इन्विटेशन के वापस आ जाए। तो आज अगर ड्राइव के बीच एक पुरानी याद अचानक से मुस्कुरा दे तो जरूर बताना। डीएम मी ऑन @mirchisiddhi और फिलहाल इस थ्रोबैक थर्सडे के मूड को कायम रखते हुए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
10: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Tickets 4:30 PM. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Shyam Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और पंजाबी तड़का ढोल एनर्जी यानी नगाड़ा नगाड़ा। जी हाँ, एक ऐसा सेलिब्रेशन एंथम है फ्रॉम द वन ऑफ द फेमस एल्बम्स जब वी मेट। मतलब यार, ये एक ऐसा एल्बम है ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और शाहिद ने जब इस गाने की शूटिंग की थी ना, तो उस टाइम पे ना उन्होंने अपने शूज के अंदर एक कॉटन रखवाई थी, क्योंकि स्टेप्स इतने ज़्यादा विगरस थे और इस गाने की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उनके पैर इतने ज़्यादा गर्म हो जाते थे कि बस उनको लगता था कि अब एक कॉटन रख दो ना तो एकदम राहत मिल जाती थी, क्योंकि गाने का बाउंस, गाने का ठहराव और गाने का फनी कुछ ऐसा था। वैसे यार, ये गाना जो सोनू निगम की आवाज़ में गाया गया है इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ जब वी मेट, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि आपका जब वी मेट का फेवरेट गाना कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। लेकिन इस शाम की शुरुआत करते हैं विद नगाड़ा नगाड़ा राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।

की टाइम। कुछ फोटोज देखते ही सारा सीन फिर से रिप्ले हो जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ फोटोज देखते ही ना सब कुछ याद आता है कि कौन लेट आया था, किसने सबसे ज्यादा फोटोज खींचे थे और कौन बिना रिहर्सल के डांस फ्लोर का हीरो बन गया था। फिर चाहे वो फोटोज बेस्ट फ्रेंड की शादी के हो, या पहली दिवाली विद फैमिली के हो, या कोई ऐसे फंक्शन की जहाँ सालों बाद सब एक साथ मिले हो। और इसीलिए तो फोटोज में ना सिर्फ चेहरे नहीं होते, पूरा मूड कैप्चर हो जाता है। और जब कोई मोमेंट इतना खास हो तो उस दिन पहनी हुई हर चीज भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का रिश्ता सिर्फ फैशन से ही नहीं, यादों से भी होता है। और अब उसी एहसास को न्यू जर्सी के और भी करीब लाया है फ्रंटियर रास। उनका यूएसए फ्लैगशिप स्टोर अब एडिसन में ओपन है, जहां हैंडलूम साड़ीज, ब्राइडल कोटोर, मेन्स वेयर और रेडी टू वेयर के साथ मिलती है 70 ईयर लीगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट फ्रंटियर रास एट 1655 ओक ट्री रोड इज़िलिन न्यू जर्सी। और दोस्तों, आपके फोन में वो कौन सी ऐसी फोटो है जो देखते ही आपको पूरा दिन याद आ जाता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और साथ में ये भी बताइए कि उस फोटो का परफेक्ट बॉलीवुड बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा था। हो सकता है कि आपकी यादों का वही साउंड ट्रैक मिर्ची पैग लगाना बन जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: कुछ गाने शादी में बज जाते हैं और फिर डांस फ्लोर की हिस्ट्री बन जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। जब वी मेट के एल्बम के बारे में बात हो रही है और इसका गाना मौजा यार कभी भी सुन लो मौज ही लेकर आता है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैक है ना जहाँ मीका सिंह की वॉइस ने लिटरली पार्टी को इग्नाइट कर दिया था। और एक बहुत ही मस्त बात है इस गाने की, मतलब इसका जो हुक स्टेप है उसको कोरियोग्राफर ने ऑन द स्पॉट क्रिएट किया था, क्योंकि यार शाहिद कपूर और हमारे जो करीना कपूर खान है वो इतने ज़्यादा हाइपर फन मोड में थे कि यार उनको देख के उन्होंने जो ओरिजिनल कोरियोग्राफी थी वो कैंसिल करके नई कोरियोग्राफी ऑन द स्पॉट बनाई और उनके कैरेक्टर्स को मैच करने जैसी जो उनकी एनर्जी थी उस एनर्जी को मैच करने जैसी उन्होंने कोरियोग्राफी बनाई थी। और तभी तो यार ये गाना 2007 से लेकर आज तक हर ढोलकी, हर संगीत, हर आफ्टर पार्टी का VIP मेंबर बन चुका है। जैसे कि आपने मज्जा ही मज्जा पे कभी डांस किया, टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं मज्जा ही मज्जा फ्रॉम वन ऑफ द फेमस एल्बम्स जब वी मेट। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जो आपको बहुत पसंद है और जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। फिलहाल सुनते हैं जब वी मेट का मजा ही मजा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirci, burga.
2: Hello?
3: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,983।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुन रहा था, मतलब।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को,
2: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
13: एट तनिष्क, नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक। They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
15: Celebrate Azadi with Eden Rove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrove.com. Eden Rove, a legacy of style.
16: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
4: Looking for the best care for your child? 7 Days Pediatrics in Edison is here for you.
5: From newborn to adolescents, we offer comprehensive care. Get hassle-free same-day appointments, immunizations, and well-child visits.
4: Our multilingual staff is available evening and weekends, along with easy telehealth options. Proudly serving the Edison and Woodbridge areas. Book your appointments today. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-307-0668. Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: Kisi zamane mein माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Islin, न्यू जर्सी।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: sets 5:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बात हो रही है ऐसे एल्बम की जो 2007 में रिलीज हुई थी, जब वी मेट, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और फिलहाल बात हो रही है एक ऐसे गाने की जो आपको सीधा मनाली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जी हाँ, श्रेया घोषाल की आवाज में ये इश्क हाय, ये सुनते ही लगता है कि मनाली की सारे रोड्स सडनली म्यूजिकल हो चुके हैं। कि श्रेया घोषाल की प्लेफुल वॉइस के साथ शूटिंग के सेट्स पर भी एक्चुअल ढोलक वाले लोकल्स ज्वाइन हो गए थे, और इसीलिए इस गाने में एक रॉ पहाड़ी एनर्जी है। वैसे यार करीना को तो वन टेक गीत कहा जाता ही है, लेकिन इस सॉन्ग को सुनने के बाद ना हर एक इंसान के दिल में, हर एक लड़की के दिल में गीत डांस जरूर करती है। वैसे कि आपको भी ये गाना पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार इतने सारे हिट एल्बम्स है और ये जो हिट एल्बम है जब वी मेट, उसके इतने सारे खूबसूरत गाने हैं। तो ऐसा भी कोई गाना है जो आप यहाँ पर प्ले करवाना चाहते हो तो जल्दी से मुझे बताना। और फिलहाल बजाते हैं ये इश्क हाय राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Julian Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day aa gayi hai. And for God's sake, please, theater mein jaakar hi dekho, is what Jeetu Raj will tell you. Kyunki is film mein kahi chhoti-chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyaar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahi bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno, don't take any spoilers. Film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man Brand New Day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही

0: लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
1: एक ही होता है।
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

मूवी हो या मूड स्विंग, दीप पॉपकॉर्न के बैग में ना हर सीन का सलूशन मिल ही जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न, यानी हेल्थी और ट्रेजिकली डिलीशियस कॉम्बो, या फिर दीप मसाला पॉपकॉर्न जो हर बाइट में इंटरवल वाला ड्रामा दे। यार फ्लेवर्स इतने जिंदा कि आप खाओगे और कहोगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टेस्ट अभी भी करारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देयर इज नो ग्रीस, नो गिल्ट, ओनली पॉप एंड मस्ती। तो आज ही मूवी टाइम के साथ ट्राई करना दीप पॉपकॉर्न, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है जब वी मेट के उस ऐतिहासिक एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना बहुत अमेजिंग है, लेकिन इस गाने की एक मेलोडी ऐसी है जो शब्दों के बिना भी ना एक कहानी सुना देती है। जी हाँ, बात हो रही है जब वी मेट के आओगे जब तुम गाने की। इतना ब्यूटिफुल सा गाना है ये, और ये गाना ना सिर्फ एक गाना नहीं लगता बल्कि एक दुआ जैसा लगता है। उस्ताद राशिद खान की क्लासिकल डेप्थ ने इस ट्रैक को प्योर सिनेमा का हार्टबीट बना दिया। वैसे शूटिंग के दौरान जब करीना बारिश में खड़ी थी तब क्रू बोलती थी कि यार एक मोमेंट ऐसा आया था जहां बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ हो गया था, पर तब हवा की आवाज मेलोडी बन गई थी और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक का फील दे रही थी, और उसी के दौरान उन्होंने शूटिंग की थी। तभी तो यार लोग कहते हैं कि ये गाना किसी के वापस आने का सबसे खूबसूरत तरीका है, किसी को याद करने का सबसे खूबसूरत तरीका है। तो चलिए, अगर आपके भी अंगना में फूल खिलते हैं जब कोई खास आपके अंगना में आता है, तो आपके लिए ये अगला गाना आओगे जब तुम साजना फ्रॉम जब वी मेट। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो जब वी मेट का आपका फेवरेट गाना कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और आपके लिए जब वी मेट का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vieva la murga. Mirci, murga.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा नहीं वही
3: मैं आपको बता रहा हूँ सर। आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
2: हेलो हेलो।
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद का बजा रहा है ये?
3: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन करो, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
11: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
12: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
13: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
14: Kisi zamane mein माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice. Celebrate Azadi with Eden Robe and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids, and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey, or shop nationwide at us.edenrobe.com. Eden Robe, a legacy of style.
0: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
17: Sham Shada, let's do not donkey, have a funky time.
18: सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका थ्रो बैक थर्सडे पे। वैसे कितने बार हम कहते हैं ना कि ओहो वो भी क्या दिन थे जब जो धनिया है वो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती थी, कभी वो तो फ्री मिल जाती थी। और नॉट जस्ट धनिया बट स्टॉक्स या कोई भी घरों के मामले में बात करो या फिर कोई भी छोटी से चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज के प्राइस पॉइंट की अगर बात करो तो अक्सर हम कंपेयर करते रह जाते हैं और थ्रो बैक मोड में चल जाते कि यार तब इन्वेस्ट किया होता तो आज कहाँ होते। तो चलिए थ्रोबैक थर्सडे पे ये भी फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमने तब यानी एक प्राइस पॉइंट यानी पिछले साल अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो इस साल क्या हाल होता। और ये बताने के लिए बॉबी बंसल जी से बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ कौन हो सकते हैं जो हर दिन हमारे साथ जुड़ते हैं इन आर स्पेशल गोल्ड डिकोडर सीरीज, जहां होती है थोड़ी चमक थोड़ी समझ। तो चलिए बुलाते हैं बॉबी जी को। बॉबी जी नमस्ते और स्वागत है आपका आज के थ्रो बैक थर्सडे सीरीज में।
19: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी। दोस्तों आपको rajjewels.com की तरफ से सबको प्यार भरा अभिनंदन। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आप थ्रो बैक थर्सडे की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है एक साल के पुराने थर्सडे की बजाय अगर एक हफ्ते के पुराने थर्सडे की भी बात करेंगे ना सिद्धि जी, तो इट विल बी एन आई ओपनर। तो वही बात याद आएगी कि काश मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता। सो आज ही के दिन अगर पिछले साल 2025 अगस्त के महीने में देखें, गोल्ड वॉज ट्रेडिंग अराउंड $3,370 $3,370 पर ट्राई अउंस गोल्ड का प्राइस ट्रेड कर रहा था। अगर हम बोले तो अबाउट $100 से ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस उस दिन एक ग्राम का कच्चे सोने का भाव था। अगर पिछले एक हफ्ते आज ही थर्सडे की बात की जाए, गोल्ड वाज अराउंड $4,100 $4,100 पर ट्राई अउंस पिछले थर्सडे गोल्ड प्राइस ट्रेड कर रहा था। सिद्धि जी
18: जी,
19: आज गोल्ड के प्राइस $4,250 $4,250 पर ट्राई अउंस ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट कल $4,280 तक टच होके आ चुकी है। सो बहुत सारे हमारे दोस्त आते हैं वो कैलकुलेशन करते रहते हैं परसेंटेज में कि कितनी परसेंट मेकिंग है, कितनी परसेंट सोना है, कितनी परसेंट टैरिफ है। दोस्तों सबसे पहले आप अपना गणित सही करें, परसेंटेज कैलकुलेट करें 3370 से $4,250 आज। परसेंटेज आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, दिल आप किया है तो खुश हो जाएगा, अगर नहीं किया था तो हैरान हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि गोल्ड इस साल की पीक $5,600 को एक बार टच कर चुका है। सो अभी भी इंतजार ना करें, गोल्ड इससे पहले ऊपर जाए, rajjewels.com के साथ प्योर स्विस गोल्ड बार्स पैम सर्टिफाइड 1 ounce 100 ग्राम्स किलो बार्स गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल टू इन्वेस्ट एट rajjewels। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं सिद्धि जी कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में सीज दीज आर इन्वेस्टमेंट बार्स स्टेट ऑफ न्यूजर्सी हैज एग्जेम्प्टेड सेल्स टैक्स ऑन गोल्ड बार्स ओवर $1,000 इन्वेस्टमेंट। अगर आप $1,000 से ज्यादा का गोल्ड बार खरीदते हैं तो उसके अंदर न्यूजर्सी का सेल्स टैक्स भी आपको नहीं देना पड़ता। सो हमारी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है और सजेशन रहती है कि आप बड़े से बड़ा डिनोमिनेशन एटलीस्ट 1 ounce से स्टार्ट करें और 1 ounce 100 ग्राम और किलो बार में rajjewels के साथ इन्वेस्ट करें। लेकिन याद रखिए एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ऐसा नहीं कि हर चीज जो चमकती है वो सोना होता है। तो कई बार कस्टमर्स हमारे दोस्त थोड़े प्राइस सेंसिटिव होके $10-20 की प्राइस फ्लक्चुएशन को देखते हुए कहीं ऐसी अननोन सोर्सेज से लेते हैं। सो मुझे लगता है कि आप वेरीफाई करें, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑथेंटिक गोल्ड में इन्वेस्ट करें ताकि जब आप अपनी रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न करना चाहें, एक्सचेंज करना चाहें या पैसे कैश करना चाहें, जब गोल्ड हायर पे होगा तो आपको निराशा ना हो। एंड rajjewels की टीम आपके साथ कमिटेड है रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग ऑफ गोल्ड के लिए। सो आइए rajjewels के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
18: थैंक यू बॉबी जी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा ना हो जाए कि अगले साल हम भी यही कहें काश इस साल इन्वेस्ट कर लिया होता तो बात ही अलग होती। तो ऐसा ना हो इसलिए बॉबी बंसल जी जो हमें एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं उनकी सुननी चाहिए। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
16: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: we're talking now.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
4: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
3: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
4: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
5: Brides, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
8: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
7: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस.
9: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
10: Famous Indian astrologer, Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: Inefficient,
13: very complex,
14: clumsy or
15: confusion ही confusion.
12: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.

0: at 6:30 PM. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price. Let's do
1: not donkey, have a funky time. एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और एक ऐसे ही एल्बम के बारे में बात हो रही है जब वी मेट। जी हाँ, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और आज इसी एल्बम के एक गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम इजलिन। प्रिया जी कहती है इजलिन से, इस एल्बम का जो एक गाना है तुमसे ही मोहित चौहान की आवाज में, वो बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है। क्योंकि जब भी वो लिंकन पार्क की शांति में होती है, उनके हाथ में गरम कोका होता है, तब बैकग्राउंड में वो यही गाना सुनती है तुमसे ही। क्योंकि यार उसमें एक लाइन है कि मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही। और वो अपने हस्बैंड को ये जो लाइन है वो डेडिकेट करना चाहती है। बड़ा ही फिल्मी मोमेंट है। जी हाँ प्रिया जी। और दोस्तों वैसे एक बहुत ही खास बात इस गाने की, मतलब यार जब मोहित चौहान की आवाज़ में ये गाना गाया गया था, एक हल्की सी हंसी जो उन्होंने लाई थी इस गाने में, जैसे कि कोई बहुत ही शांति से किसी का नाम ले रहा हो। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे मोहित चौहान जी माइक से थोड़ा दूर हो गए थे ताकि वॉइस में वॉकिंग इन द रेन वाली फीलिंग आ जाए। और शायद इसीलिए ये गाना लगता है कि यार इवन दो तुम तन्हा कहीं चल रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा वो अपना साथ ही चल रहा है। तो आप भी बताइए क्या आपको ये गाना पसंद है, और ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार उस एल्बम का हर एक गाना बजाएंगे आपके लिए। और हाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
4: कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं।
0: हजारों लोग, एक तिरंगा, एक दिल, और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026।
5: संडे अगस्त 9th 1 PM onwards, फ्रॉम इस्लिन टू एडिसन ऑन ओक ट्री रोड, फीचरिंग लक्ष्यराज सिंह जी महाराज, ऋचा अनिरुद्ध, सानिया मल्होत्रा एंड मोर। जॉइन द कल्चरल फेस्ट एंड मेला बिहाइंड उमिया धाम टेम्पल।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
9: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज पांच का पटाका में बात हो रही है पांच ऐसे स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज की जो दिमाग को भी एक्सरसाइज करवाती है और पॉपकॉर्न का स्टॉक भी खत्म करवा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 ऑन द लिस्ट, स्पेशल ऑप्स। जी हाँ, ये कहानी है रॉ एजेंट हिम्मत सिंह की जो मानते हैं कि कोई भी अटैक ना रैंडम नहीं होता, जब सब केस क्लोज कर देते हैं ना तब ये वो इंसान है जो डॉट्स जोड़ते रहते हैं। स्लो बर्न है पर फिर भी जब फायर पकड़ता है ना फुल ऑन देसी स्पियोनेज फील होता है। और इसी के साथ नंबर 4 पर है असुर। जी हाँ, साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर। ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक चेस गेम है, एक किलर मूव के आगे, मतलब इन्वेस्टिगेटर्स दो कदम पीछे, काफी नोक झोंक, काफी आगे पीछे चलता आ रहा है। असुर इज अ मस्ट वॉच इन द OTT स्टैंडर्ड्स। वैसे साइंस और माइथोलॉजी का बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है, जहां हर एक एपिसोड के बाद ना आप खुद से पूछोगे कि यार अब आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, हमारी पांच का पटाखा की साइकोलॉजिकल क्राइम स्पाई थ्रिलर जारी रहेगी, तो कहीं ना जाइए। वैसे इस लिस्ट में आपको कौन सा नंबर ऐड करना है मुझे जरूर बताना, आपकी फेवरेट साइकोलॉजिकल थ्रिलर। टेल मी ऑन RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और स्पेशल ऑप्स और असुर के बाद लिस्ट में नेक्स्ट क्या होगा ये आपको बताऊंगी इस गाने के बाद, तो कहीं ना जाइए। बने रहिए मेरे साथ राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और पांच का पटाका की गाड़ी आज धीरे धीरे टॉप गियर में आ रही है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं ऐसे शोज पर जो सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि फील किए जाते हैं। जी हां, क्राइम थ्रिलर एंड स्पाई वर्स के नंबर पांच पर थे हमारे स्पेशल ऑप्स, नंबर चार पर असुर और नंबर तीन पर है पाताल लोक। जी हाँ, क्राइम थ्रिलर का एक ऐसा केस जो लगने में तो सिंपल लगता है पर जैसे जैसे और एपिसोड्स बढ़ते हैं ना तब समझ आता है कि ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये होश उड़ा देने वाला थ्रिलर है। वैसे यहाँ पर यार विलन भी उतना ही समझदार है जितना हीरो है। ये शो आपको एंटरटेन तो करेगा ही लेकिन अलर्ट ज्यादा करेगा। नंबर दो पर है द नाइट मैनेजर, इंडिया वाला। जी हाँ, फाइव स्टार होटल्स, प्राइवेट जेट और बीच में एक आदमी जो अंडरकवर खेल रहा है दुनिया के सबसे बड़े डेंजरस आर्म्स डीलर के साथ। स्टाइलिश है, टेंस है और हर एपिसोड के एंड पर ना एक ही थॉट आएगा कि यार ये ना पक्का पकड़ा जाएगा। वैसे इसमें आदित्य रॉय कपूर की एक्टिंग आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। वैसे ये तो था नंबर दो और नंबर एक का लेवल क्या होने वाला है समझ ही जाओ। वैसे आपके क्या गेसेस है आज की पांच का पटाका की जो स्पाई थ्रिलर लिस्ट है उसमें नंबर एक पे क्या आ सकता है? टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: ओ गॉड, वन मोर।

0: Milci.
1: Buscaba la buscaba la sacabana.
2: ¡Rámbala!
1: Burga, burga. La virpa la burga.
2: Milci, burga.
3: ¡Acá!
4: हेलो
5: हाँ जी बोलिए
4: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
5: आप बोलिए ना
4: कॉल आपने किया आप बोलिए
5: कॉल मैंने किया हेलो
4: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
5: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
4: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
5: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
4: नींद में क्या
5: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
4: क्या बेल मेरे यहाँ बजी
5: है आ जाते उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी चले हेलो हाँ बताइए
4: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
5: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
4: हेलो
5: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
4: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
5: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
4: फोन नहीं कर रहा अभी
5: आप देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
4: चप्पल
5: पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
4: जीना आराम कर दिया तुम जैसे
5: जीना बता रहा हूँ भाग यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
4: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
5: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: प्यारी ब्राइड्स क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
14: एट तनिष्क नो टू डायमंड्स आर एग्जैक्टली अलाइक They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
15: Oh no!
16: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप 1213 न्यू जर्सी 27 सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप 700 हैरिस एव मिडिलसेक्स इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर यू आर इन गुड हैंड्स
17: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2
18: Celebrate Azadi with Eden Rove and bring the feeling of home to USA. From August 6th to 16th, enjoy flat 35% off on apparel for men, women, kids and flat 10% off on fragrances. Visit our flagship store in North Brunswick, New Jersey or shop nationwide at us.edenrove.com. Eden Rove, a legacy of style.
0: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
3: Explosive vibe or power-packed energy ka dose.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज हमारे 5 का पटाखा की लिस्ट जारी है जिसमें एंट्री हो चुकी है 5 स्पाइवर साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स की। नंबर 5 पर था स्पेशल ऑप्स, नंबर 4 पर असुर, नंबर 3 पर पाताल लोक, नंबर 2 पर द नाइट मैनेजर इंडिया वाला और नंबर 1 का जो धमाका है वो यार आई एम वेरी श्योर आप सब इस पर एग्री करोगे, नन अदर देन द फैमिली मैन। मतलब स्पाई थ्रिलर तो है ही, डार्क कॉमेडी भी है, मनोज वाजपेयी है और क्या चाहिए। मतलब एक आदमी जो दिन में देश बचाता है और रात को पीटीए मीटिंग्स अटेंड करता है, वैसे टेक्निकली वो रात को भी नहीं कर पाता है, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेल हो ही जाता है। एक्शन है, इमोशन है, ह्यूमर है, सब एक ही फ्रेम में है और इसलिए ये सिर्फ एक वेब सीरीज ही नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि हीरोज भी आम लोग हो सकते हैं, बस उनके सीक्रेट्स थोड़े ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो वैसे स्पाई थ्रिलर जॉनर में आपकी फेवरेट कौन सी लिस्ट है, आपका फेवरेट कौन सा ऐसा मूवी या फिर वेब सीरीज है जो आपको दोबारा देखने में बहुत मजा आता है, टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और दोस्तों आपकी भी कोई ऐसे 5 का पटाखा की खास लिस्ट है मुझसे जरूर शेयर करना, वो मैं हमारे न्यू जर्सी की जनता है उनके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए यार स्पाई थ्रिलर की जो ये पूरी लिस्ट थी वो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगले पटाखे के लिए इंतजार करना कल का, फिलहाल बजा दे ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
11: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
10: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
12: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं।
13: हजारों लोग, एक तिरंगा एक दिल, और इस फीलिंग का नाम है इंडिया डे परेड 2026।
14: संडे अगस्त 9th 1 PM ऑनवर्ड्स फ्रॉम इसलिन टू एडिसन ऑन ओक ट्री रोड, फीचरिंग लक्ष्यराज सिंह जी महाराज, रिचा अनिरुद्ध, सानिया मल्होत्रा एंड मोर। जॉइन द कल्चरल फेस्ट एंड मेला बिहाइंड उमिया धाम टेम्पल।
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: Tera kya hoga, Kalya?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab mirchi kha.
18: Radio Mirchi, it's hot.

0: at 7:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों कभी नोटिस किया है कि हर दिन ना अर्जेंसी नहीं होती। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का दिन ना उन्हीं में से है जहां सब कुछ अभी नहीं थोड़ी देर बाद कैटेगरी में लगता है और ये परफेक्टली ओके है क्योंकि आज हर किसी को ना हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी कभार बस प्रेजेंट रहना ही काफी होता है। तो अगर आज आपने भी अपने आप को थोड़ा स्लो चलने दिया है तो समझो कि आपने भी एक बहुत ही सही डिसीजन लिया। तो आप भी जरूर बताना कि आज आपने किस चीज को कॉन्शियस स्लो रखा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मैंने अपनी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा धीमा कर दिया है क्योंकि ये जो शाम है वो बहुत ही सुहानी है, तो यार हर बार हाई बीट्स अर्जेंट बीट्स की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये धीमा सा गाना सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।